सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द

0: से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संसार के भौतिक सुख नश्वर हैं, इसलिए सांसारिक भोगों में ना उलझकर एकमात्र परम पिता परमात्मा का स्मरण करिए, क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है।

संसार में जितना अधिक सहारा खोजोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, पर एक बार भगवान का हाथ पकड़ लो, फिर परिस्थितियां बदले न बदले, हृदय में शांति अवश्य उतर आएगी, क्योंकि भगवान परिस्थितियों से पहले हृदय को संभालते हैं।

वंदना कार्यक्रम में आज आपने सुना सुमन कल्याणपुर, उदित नारायण, राजेंद्र काचरू और शर्मा बंधुओं को। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है सत्य की महिमा। आलेख है केसी जैन का, वाचन है विजया भांबरी का।
1: सत्य सर्वांग सुंदर है, इसलिए उसे ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। असत्य ही हर जगह मुख छुपाता फिरता है। हम सत्य बोलें, लेकिन उससे पहले झूठ का परित्याग करें। सत्य पर हमारी श्रद्धा है, लेकिन निष्ठा नहीं है। सत्य से संबंध मात्र नारों और किताबों तक है, न कि हमारे आचरण में है। अनेकांत का आलंबन लेने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बार विष्णु के पास लक्ष्मी और शनि एक साथ पहुंचे और कहने लगे, आप हमें ये बतलाइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। विष्णु ने विचार किया, अगर मैं शनि को अच्छा कहता हूं तो लक्ष्मी निश्चित ही नाराज होगी और लक्ष्मी के कुपित होने से बेमतलब ग्रह कलेश मचेगी। अगर मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूं तो शनि के नाराज होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अनेकों विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। उस समय उन्होंने अनेकांत का आलंबन लिया और शनि तथा लक्ष्मी से कहा कि तुम दोनों उस वृक्ष को छू करके आओ, तभी मैं कुछ निर्णय कर सकूंगा। दोनों क्षण भर में ही वृक्ष को छू करके आ गए। उन्होंने कहा, आते समय लक्ष्मी अच्छी लग रही थी और जाते समय शनि अच्छा लग रहा था। बात बन गई। लक्ष्मी जब आती है तो प्रत्येक व्यक्ति आनंदित होता है और शनि जब जाता है तो बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता है। आप दूसरे की चिंता छोड़ें, आप स्वयं अपने आप में डूबकर सत्य को स्वयं खोजने की कोशिश करें। असत्य के गंदे नाले और डबरों से बाहर निकल सत्य के महासागर में डुबकी लगाकर देखें, क्या अलौकिक आनंद आता है। सागर का आनंद किनारों पर खड़े होकर नहीं लिया जा सकता, उसके लिए गोताखोर ही होना पड़ता है और जो गोताखोर होता है वो समुद्र की अतल गहराई में डूबकर रत्न की खोज करता है। गोताखोर होने के लिए कपट, क्रोध, मान के वस्त्र उतारना आवश्यक होता है। सारे विकारों को छोड़कर जो निर्विकार हो जाता है वही आदमी सत्य को पा सकता है। एक राजा प्रजा का पालक था, सत्य का उपासक था, सत्य के लिए स्वयं अपने आप तक का बलिदान देने के लिए प्रस्तुत रहता था। उसने एक घोषणा की कि जो वस्तु बाजार में ना बिकेगी उसे मैं खरीद लूंगा। घोषणा अनुसार उसके अधिकारी सांझ के वक्त बाजार में निकलते और बची हुई वस्तु खरीदकर खजाने से पैसा चुका देते थे। एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति बेचने के लिए बाजार में लाया, लेकिन दाम अधिक होने

0: के कारण शाम तक कोई क्रेता उसे खरीद ना सका। राजा के अधिकारी आए और उन्होंने मुंह मांगे दाम देकर उसे खरीद लिया। वो मूर्ति शिल्प का उत्कृष्ट नमूना थी, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति राजा के दरबार में लाई गई, वैसे ही राजा का पतन होना शुरू हो गया। लक्ष्मी ने साथ छोड़ दिया, रानी मायके चली गई, पुत्रों ने साथ छोड़ दिया, मंत्री, सेनापति, माता आदि ने भी राजा का बुरे वक्त में साथ न दिया। राजा सत्य के पैरों पर गिर पड़ा। मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी मैंने आपके साथ रहा। अब अगर आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? आप यहीं ठहरिए। राजा की प्रार्थना पर सत्य रुक गया। जैसे ही सत्य रुका, वैसे ही राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा आ गई। लक्ष्मी, सरस्वती, रानी, मंत्री, सेनापति आदि और पुत्र सभी लौट आए। राजा फिर से संपत्तिवान हो गया। सत्य का पावन प्रकाश मनुष्य के अंदर सोई हुई धार्मिकता जगा सकता है, आपको मंजिल की प्राप्ति करा सकता है। सत्य की सदैव जीत होती है और असत्य को सदा मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए सत्य के दीपक से अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करने की कोशिश करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था सत्य की महिमा। आलेख था केसी जैन का और वाचन था विजया भांबरी का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है सुरेश वाडेकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। आइए अब आपको सुनवाते हैं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा खरीफ दलहनी फसलों में पोषक प्रबंध। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00।

सुबह 7:31 पर ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में कवि मुखसौ के अंतर्गत आज सुनिएगा नानक चंद शर्मा का काव्य पाठ। साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे कुछ ब्रज लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता। वार्ताकार राजवीर सिंह, भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा ओजोन परत का क्षरण। आलेख और वाचन होगा श्री सतीश शर्मा का। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11:00 प्रस्तुति होगी संजय सारस्वत की। यादों के झरोखे से चित्रपट संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 11:30 पर। मध्याह्न 12:00 गीत बात और SMS ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री डोरीलाल गोला के गाए ब्रज लोकगीत। दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा त्वचा संबंधी रोग लक्षण एवं निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गुनीत, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर।

सुनेगा स्वरचित कहानी, शिक्षा का महत्व कहानीकार होंगे अनु सारस्वत। शाम 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान का महत्व, दूसरा विषय होगा दूध देने वाले पशुओं का पोषण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय, साथ ही ओबी पर आधारित भेंट वार्ता सुनिएगा, पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और इनसे बातचीत माधुरी दीक्षित की। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज वार्ता, ब्रज की मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े, वार्ताकार होंगे डॉक्टर नरपति देव भरद्वाज। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तरहने रात 9:15 पर। रात 10:00 ढोला सुनिएगा जिसमें प्रसंग होगा कंपलागढ़ की लड़ाई, कलाकार होंगे प्रभु दयाल और साथी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात 10:30 पर जिसमें आज आप सुनेंगे पखावज वादन, कलाकार होंगे श्री रसिक बल्लभ।

युवा वाणी कार्यक्रम शाम 5:30 पर होगा, जिसमें आज की बात में विषय है युवाओं में तकनीकी एवं डिजिटल कौशल। दूसरा विषय होगा बदलती तकनीक के साथ युवा खुद को कैसे तैयार करें। साथ ही

0: ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है खरीफ दलहनी फसलों में पोषक प्रबंध। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली दलहनी फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इनके पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देने की। दलहनी फसलों में फसल विशिष्ट के लिए राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है, और इस समय जो खरीफ में आप बोएंगे उसमें उड़द, मूंग, अरहर और लोबिया के लिए अलग विशिष्ट राइजोबियम कल्चर आता है, तथा फास्फोरस सॉल्युबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का युग्म टीकाकरण बुवाई के समय बीजोपचार द्वारा दिया जाता है। और इसको देने का तरीका कुछ इस प्रकार है। 600 से 700 मिलीलीटर पानी में 60 से 70 ग्राम गुड़ या चीनी घोल करके उबालें, फिर उसे ठंडा होने पर घोल में करीब 200 ग्राम फसल विशिष्ट का राइजोबियम कल्चर तथा 200 ग्राम फास्फेटिक कल्चर मिलाएं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम दलहनी बीज पर हल्के हाथों से भली भांति मिलाएं, ताकि बीजों पर इस मिश्रण की एक पतली परत समान रूप से चढ़ जाए। इसके पश्चात बीज को छाया में सुखाकर उसी दिन कम धूप के समय में यानी कि शाम के समय में बुवाई कर दें। यदि फफूंदनाशक रसायनों से बीज शोधन करना हो तो पहले इसे आप राइजोबियम कल्चर से तथा फास्फेटिक कल्चर से बीज को उपचारित करें, उसके बाद फफूंदनाशी रसायन से बीज को उपचारित करें। दलहनी फसलों में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन प्रारंभिक मात्रा के तौर पर दें। अधिक नाइट्रोजन की मात्रा फसल में वानस्पतिक विकास बढ़ा करके उत्पादन घटाती है। यदि फास्फोरस की आपूर्ति डीएपी उर्वरक से की जा रही है तो नाइट्रोजन की प्रारंभिक मात्रा अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित फास्फेटिक उर्वरक की मात्रा या इसके अभाव में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में बुवाई

0: के समय बीज के नीचे कुंडों में देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध न होने पर ही आप डीएपी का प्रयोग करें। फास्फेट कल्चर के प्रयोग से लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फेट की उपलब्धता होती है। तो इस प्रकार आप फास्फेट कल्चर के प्रयोग से साथ साथ आप फास्फेट कल्चर के साथ में अगर आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फेट उर्वरक को साथ में देने से दलहनी फसल की जो फास्फेट की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। खरीफ दलहनी फसलों के लिए पोटेशियम उर्वरक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, किंतु कुछ विश्वविद्यालयों और शोध परीक्षणों के परिणाम के आधार पर ये कहा जाता है कि 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश के प्रयोग से उपज में उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त होती है।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तन्त्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं

0: अवलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षाकार्येषु ओमानदेशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रियसमन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसङ्गेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

मूल्याभिषेक गीत कार्यक्रम सुनने के पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी आज 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीज, फोड़े फुंसी, मस्से, एलर्जी, पंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अभी आपने सुना गीता दत्त को फिल्म 12 o'clock में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आन फिल्म से, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी साथ में श्याम की आवाजों में। बोल है शकील बदायूनी के, धुन बनाई है नौशाद ने।

आन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और श्याम की मिली जुली आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म से, आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, धुन ओपी नैयर की।

दिल लगी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सुरैया और श्याम की आवाजों में। शब्द रचना थी शकील बदायूनी की और संगीत रचना थी नौशाद की। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।

0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान एक पेड़ माह के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
3: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है, नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं, शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने बनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
4: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
2: कल प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण

0: अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
2: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
3: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
5: मानसून का

0: बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
1: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: भैया कवि मुखसों के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं नानक चंद्र शर्मा को काव्य पाठ।
1: सब मैया और बाप अपने आंगन माही हंसते खेलते भे बेटा बेटीन को निहार के गदगद है जाए, पर जब को रोग बिनके लड़े तेन को घेर ले तो बिन की नींद हराम है जाए। बहुत सी ऐसी बीमारी होए जो हमारे वातावरण में फैले भय वायरसन के कारण फैले, तो इन बीमारी ते बचाए वे के काजे बच्चान के जन्म लेते ही टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ है जाए और 18 से 24 महीना तक चले। जी बात हम सबको पता होनी चाहिए, तभी हमारे बेटा बेटी निरोग रहते अच्छी जिंदगी जी सकें। तो आज मेरे काव्य पाठ का विषय है बच्चान में टीकाकरण। सब मात पिता ने की सोच यही शिशु होए निरोगी व स्वस्थ रहे, हर से पुल के सत साल जिये अंगना में है कैसे सुमस्त रहे, दुख जीवन माही ना आवे कबू दुख।

तो मनावत है। सब वेद हकीमन के घर में कर जोर के आस लगावत है। सुत और सुतान को कष्ट दिखे परिवार सब घबरावत है। सुत और सुतान को कष्ट दिखे परिवार सब घबरावत है। यदि चाहत है शिशु स्वस्थ रहे एक बात बतावत है सुनिए। जब स्वास्थ्य विभाग के लोग मिले तब का समझावत है सुनिए। पत्नी हो या पुत्र वधु अपनी जननी ही कहावत है सुनिए। कब कौन सो टीका लगे शिशु को एक कार्ड बनावत है सुनिए। कब कौन सो टीका लगे शिशु को एक कार्ड बनावत है सुनिए। अब यह बात कुछ समझाए के काजे कि कौन सो टीका कब कब लगवाना चाहिए और वो कौन सी बीमारी थे हमारे बालक बालिकान को बचाएगो। मैं एक गीत पढ़ रहा हूं। टीका लगे समय पे शिग्रे होए ना लापरवाही है। अरे दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल कहा बुराई है। अरे दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल कहा बुराई है। टीका लगे समय पे शिग्रे होए ना लापरवाही है। दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल कहा बुराई है। शिशु पर पेट में तो सास को बंधी है आस। अब तो हमारे पोता पोती को खिलाऊंगी। पूजू कुल देवता को उठो ना धरूंगी। मैं तो बहु पे न काम कोई बोझ को कराऊंगी। बेटा ते कहूंगी फल फ्रूट लेके आइयो लल्ला। बहु नाए खावेगी तो हाथन खवाऊंगी। टीका टिटनेस को लगेगो आज ध्यान मुकू। टीका लगवाए वो मैं कैसे भूल जाऊंगी। टीका लगवाए वो मैं कैसे भूल जाऊंगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने मोकू बात बताई है। अरे दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल कहा बुराई है। दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल कहा बुराई है। टीका लगे समय पे शिग्रे होए न लापरवाही है। दोष लगे ना पूछन ताकू पूछ ल

कहा बुराई है। घर में कराऊं ना प्रसव कोई कछु कहे, बदलो जमानो मैंने बात ठान लई है। घर में कराऊं ना प्रसव कोई कछु कहे, बदलो जमानो मैंने बात ठान लई है। पहले बतराए मुकु सब समझाए दई, नर्स है समझदार पहचान लई है। अस्पताल लेके जाऊं देखभाल होवे सही, बात है सही तो मैंने झट मान लई है। कौन बहकावे मुकु पथ ते डिगावे मुकु, दुनिया तमाम मैंने आप छान लई है। दुनिया तमाम मैंने आप छान लई है। और घर पे दाई आई ना आई, घर पे दाई आई ना आई, जाने कहा सफाई है। अरे दोस्त लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। टीका लगे समय पे सिगरे, होए न लापरवाही है। अरे दोस्त लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। और बेटा जन बेटी जन कछु ना फरक पर, दो मेरे नैनन की ज्योति के समान है। बेटा जानो बेटी जन कछु ना फरक पर, दो मेरे नैनन की ज्योति के समान है। डेढ़ महीना ते पहले बीसीजी को टीका लगे, फर्स्ट डीपीटी को टीका जैसे राम बानो है। डेढ़ महीना ते पहले बीसीजी को टीका लगे, फर्स्ट डीपीटी को टीका जैसे राम बान है। पोलियो की पहली खुराक को है टाइम यही, पोलियो के रोग को भगाए वो आसान है। खाई है कसम तो निभाएंगे हूँ हम अब, पोलियो विहीन होवे भारत महान है। पोलियो विहीन होवे भारत महान है। जागरूक होए जनता सिगुरी, जागरूक होए जनता सिगुरी, ऐसी मुहिम चलाई है। अरे दोस्त लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। टीका लगे समय पे सिगरे, होए न लापरवाही है। दोस्त लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। और ढाई महीना को शिशु होवती ही ध्यान राखूं, डीपीटी को दूजो टीका लगे गो जरूर रे। ढाई महीना को शिशु होवते ही ध्यान राखूं, डीपीटी को दूजो टीका लगे गो जरूर रे। पोलियो की दूसरी खुराक जावे पेट में, तो पोलियो को डर कहूं भग जावे दूर रे। साढ़े तीन महीना की होवेगी उम्र जब, डीपीटी को लगे गो आवे मोहड़े पे नूर रे। पोलियो की तीसरी खुराक देवो नाए बोलू, रोग प्रतिरोधी शक्ति मिले भरपूर रे। रोग प्रतिरोधी शक्ति मिले भरपूर रे। कि जच्चा बच्चा कार्ड में मैंने, जच्चा बच्चा कार्ड में मैंने सब तारीख लिखाई है। अरे दोस्त लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। टीका लगे समय पे सिगरे, टीका लगे समय पे सिगरे, होय न लापरवाही है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। जब गुड्डा गुड़िया की उमर नौ माह होए, खसरे को टीका तू जरूर लग वयोरी। जब गुड्डा गुड़िया की उमर नौ माह होए, खसरे को टीका तू जरूर लग वयोरी। खसरे को खतरा मिटावनो पड़ेगो अब, खसरे के टीका को ना ध्यान भूल जाइयो रे। महीना 18 और 24 के बीच में ही पोलियो की बूस्टर खुराक तू पिवायोरी। महीना 18 और 24 के बीच में ही पोलियो की बूस्टर खुराक तू पिवायोरी। डीपीटी को टीका फाइनल लग जावे जब, हष्ट पुष्ट पोता पोती गोद में खिलाइयोरी। हष्ट पुष्ट पोता पोती गोद में खिलाइयोरी। हेपेटाइटिस बी को टीका, हेपेटाइटिस बी को टीका, चिंता दे ये मिटाई है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। टीका लगे समय पे सिगरे, टीका लगे समय पे सिगरे, होय न लापरवाही है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। दोस लगे ना पूछन ताकू, पूछ ले कहा बुराई है। अब या बात कू।

ऐसे भी समझ सके कि भौती काकी कभो स्कूल पढ़वे ना गई, पर समझदारी में कमी ना आए। गांव की सग बैयर बानी वाइते पूछ भी आए, चाहे आंगनवाड़ी वाली बहन जी हो चाहे एएनएम, सब भौती काकी तई बतरा में और बच्चान को सही समय पर टीकाकरण को महत्व समझा में। काकी ने पूछी, बहन जी इन टीकान को क्यों लगवा में, का इनते बालक मोटे है जामे। काकी ने पूछी, बहन जी इन टीकान को क्यों लगवा में, का इनते बालक मोटे है जामे। बहन जी बोली, बात मोटे है वे की ना है, स्वस्थ और तंदुरुस्त है वे की है। हमारे आसपास रोग फैलाए बारे मच्छर सूक्ष्म रोगाणु रहे जिनते वायरस कहें, वे छोटे बालकन पे आक्रमण करें और कर डारे बीमार, यही कारण सो हमें रहना चाहिए होशियार। अब जैसे टीबी हो,

0: कुआं में, का इनते बालक मोटे है जामे। काकी ने पूछी, बहन जी इन टीकान को क्यों लगवामे? का इनते बालक मोटे है जामे? बहन जी बोली, बात मोटे है वे की ना है, स्वस्थ और तंदुरुस्त है वे की है। हमारे आसपास रोग फैलाए बारे मच्छर सूक्ष्म रोगाणु रहे जिनते वायरस कहें, वे छोटे बालकन पे आक्रमण करें और कर डारे बीमार। यही कारण सो हमें रहनो चाहिए होशियार। अब जैसे टीबी हो, टिटनेस हो या खसरा, इनते जान को है सके खतरा। या काजे बीमार होवे ते पहले ही इनते लड़वे की ताकत शरीर में पहुंचा में, जाते बीमारी बच्चा तक ना पहुंच पावे। बहुत ही काकी बोली, पूरी बात अब समझ में आई। बच्चा तो आंगन में खेल तो अच्छा लगे, पर स्वस्थ हो वह जरूर है, और आके कारण बच्चा में टीकाकरण को ध्यान रखना चाहिए। बच्चा ही कल के भविष्य हैं, या भविष्य को हमें सम्मान रखना चाहिए। बच्चा ही कल के भविष्य हैं, या भविष्य को हमें सम्मान रखना चाहिए।
1: भैया अभी आपने सुनो कवि नानक चंद शर्मा को काव्य पाठ, और आओ अब आपको सुनवा में या लोकगीत जाको गयो है राखी ने।

भैया अब आपने सुनो रमन लाल को गायो ये लोकगीत। आओ अब आपको सुनवा में रमेश रावत को गायो लोकगीत।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आग्रह है,
1: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा

0: डालेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से

0: इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीख।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में आज सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीस, फोड़े, फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर गुनीत वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अभी आपने सुना कविता सेठ को फिल्म निर्जा में। शब्द थे प्रसून जोशी के और संगीत था विशाल खुराना का।

0: जावेद अली, मोहित चौहान और एआर रहमान को अभी आप सुन रहे थे रॉक स्टार फिल्में। गीत को लिखा था इम्तियाज अली ने और धुन बनाई थी एआर रहमान ने। कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत को लिखा था नीलेश ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने।

ओह माय गॉड फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कैलाश खेर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी मीत ब्रदर्स ने।

नंदिनी श्रीकर और साथियों की आवाजों में। अभी आपने सुना रावण फिल्म का यह गीत, लिखा था पंछी जालोनवी ने और धुन बनाई थी विशाल ददलानी ने।

0: इस गाने के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी

0: हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: आइए श्रोताओं, अब आपको पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं कार्यक्रम पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं राजवीर सिंह और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
5: श्रोताओं, प्रकृति के जितने भी घटक हैं, पानी उसमें से महत्वपूर्ण है। बिना जल के जीवन की संभावना को हम नहीं सोच सकते। जल है तो कल है, ऐसी कहावतें हमारे आसपास प्रचलित रहती हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में जहां विशेषकर प्रकृति के तत्वों के प्रति इतनी पूज्यता का भाव है कि हम नदियों को पूजते हैं, तालाबों को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, तो हर चीज के पीछे पूज्य का भाव देखने का मतलब यही है कि उनके संरक्षण की भी आवश्यकता है और बिना उनके हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ये पूज्य का जो भाव है वो कहीं तिरोहित हो रहा है और जो संवेदनशीलता है चीजों के प्रति वो कहीं कम हो रही है, तो आज हम ये बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सिंह साहब हैं, आप जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं और प्रकृति के तत्वों से उनका रोजाना का नाता है। जल संरक्षण के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब
5: जी। तो ये जो संवेदनशीलता का मामला है प्रकृति के घटकों के प्रति, उसमें पानी भी एक है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है पानी, तो इसलिए आज हम पानी को लेकर के बात कर रहे हैं। हर घटक महत्वपूर्ण है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पानी के संरक्षण के प्रति आज कहीं ये भाव दिखाई नहीं देता, उसकी बर्बादी ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो संवेदनशीलता है वो क्यों कम हो रही है, लोग क्यों इसके प्रति जागरूक नहीं है, जबकि उसके बिना तो हम जीवन की संभावना भी नहीं दे सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।
6: बिल्कुल सही कहा सिंह साहब
5: जी।
6: जीवन की जो सृष्टि हुई है वो जल से ही हुई है ऐसा माना जाता है। जो पांच तत्वों से हमारा जो शरीर बना है उनमें जल सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा भी है कि क्षत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इन पांचों तत्वों से में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जल ही है। आज इतने महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जो आज समाज के अंदर जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आजकल हम देख रहे हैं जब भी गर्मियां आती हैं तो पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। पूरे देश की बात करें तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राजधानियां आज पानी के लिए हाहाकार यानी वहां पर मचा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही बंगलौर के बारे में आया है कि बंगलौर के अंदर पानी भूजल जो है समाप्त हो गया है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति,
5: जबकि बंगलौर की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो देखा है कि वहां उसको झीलों का शहर ही कहा जाता है। उसके आसपास, बंगलौर के आसपास प्राकृतिक तौर पे सैकड़ों कभी झीलें हुआ करती थी
6: जी।
5: और यही कारण है कि शायद आज वो नहीं रही होंगी, तो भूजल भी चला गया और वहां जब भी पानी बरसता है तो बंगलौर में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है शायद उसका भी कारण यही है कि वो प्राकृतिक जो पानी के आवास थे वो खत्म हो गए।
6: बिल्कुल। तो आज स्थिति वहां ये बताई जा रही है, रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से भी आता है कि वहां सरकार 200 किलोमीटर दूर बोरवेल करने की सोच रही है। वहां पर
5: जहां वाटर
6: जहां लेवल है क्योंकि वहां पानी जमीन के अंदर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ये इन सब चीजों पर जब हम चर्चा करते हैं किसी भी शहर के बारे में, किसी भी गांव के बारे में, तो हम मुख्य रूप से एक बात या एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां पर, बंगलौर की अगर बात हम करें तो वहां पर कभी जितनी भी बहुमंजिल

0: इमारतें हैं, उस हर बहुमंजिला इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े बोरवेल हुआ करते थे, जिसका कि खामियाजा आज बंगलोर को और दिल्ली जैसे अन्य शहरों को भोगना पड़ा।
1: बड़ी आबादी वाले जो शहर है, तो मथुरा की भी जब हम बात करते हैं, स्थितियां आ रही है, तो मथुरा में भी जहां 10 ब्लॉक है, 4-5 तहसीलें हैं, वहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वो ब्रज का जो फेनोमेना है वो भी बहुत नीचे ही जा रहा है, और दिनों दिन जा रहा है, वर्षा कम होती जा रही है, दोहन ज्यादा हो रहा है, तो पानी तो फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इस पे कोई तथ्य है आपके पास?
0: बिल्कुल, मथुरा जिला जैसा के साहब आगरा मंडल के अंदर आता है, और केवल मथुरा ही नहीं, मेरा जो मूल जो रहा है आगरा मंडल ही रहा है पानी के शोध पर। पूरा आगरा मंडल के अंदर जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इन सब की चारों ही जिलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इनमें मथुरा एक ऐसा जिला है जहां पर अधिकांश जो भाग है, जहां का लगभग 40% जो भाग है वो खारी पानी का है। 10 ब्लॉकों की जो हम बात कर रहे थे, इनमें सबसे अधिक जो दयनीय स्थिति आज नंदगांव ब्लॉक की है, जहां पर अधिकांश जो जल है, भूजल है, वो खारी है। इसके अलावा गोवर्धन है, यहां पर भी लगभग 60% खारी पानी है। फरे में भी 60% खारी पानी है, मथुरा में 50% खारी पानी है, छाता में 25% है। इस तरह से देखा जाए तो इन सभी ब्लॉकों में खारी पानी की जो समस्या है वो मुख्य है।
1: अच्छा, अब हम जमुना जैसी सदाबहार और वर्ष भर बहने वाली नदी हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मंडल से होकर गुजर रही है। भाई आगरा की आपने बात की, तो उसमें मथुरा भी, आगरा भी, इन सब शहरों को टच करती हुई जा रही है। तो क्या कारण है कि हम अपने जल स्रोतों को संभाल नहीं पाए? पहले चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, बड़े गांव के चारों तरफ तालाब और पोखरें हुआ करती थी, छोटा ढाणी या नगला है तो उसके एक दो तरफ होती थी, लेकिन ऐसा कोई गांव या ढाणी नहीं होती थी जहां तालाब नहीं हो, कुएं नहीं हो, प्रकृति का बारिश का पानी एक बार ठहर के तब कहीं नाले में जाता था, लेकिन एक बार गांव के आसपास वो ठहरता था, उससे वो रिचार्ज हो जाते थे जल स्रोत हमारे। तो वो धीरे धीरे कहाँ आ गए? इनक्रोचमेंट पे चले गए, लोगों ने उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई, लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, हम कहीं अपने जो हमारे उत्तरदायित्व थे प्रकृति को संरक्षित करने के, उससे कहीं दूर हो गए।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें जैसे कि ये जो हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, पारंपरिक जल स्रोत जिनको कहते हैं, वो जल स्रोत कहीं गुम हो गए हैं। उसका मैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण समझता हूँ, जिस पर चर्चा बहुत कम हो पा रही है, उसमें है जैसे सरकार का एक भूमि सुधार यानी कार्यक्रम है। भूमि सुधार कार्यक्रम में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, गरीब लोगों के पट्टे भी होते हैं गांव समाज में, अन्य चीजें भी होती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की यानी समस्याएं हैं कि पट्टे काटते समय जहां पर जो ढलान वाली जो जमीन है, जहां पर गांव का पानी जहां जाकर के तालाब में इकट्ठा हुआ करता था, ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर ये तालाब में जहां पानी इकट्ठा होता था, तो वहां पर मुख्य रूप से ऐसी स्थिति देखी गई कि वहां पट्टे काट दिए गए। जब वहां पट्टे काट दिए गए तो यहां अनदेखी हुई एक तरह से, कि जहां ये देखा ही नहीं गया कि वहां तालाब वहां पहले हुआ करता था या वहां पानी इकट्ठा होता था। गर्मी के दिनों में जब पानी सूख गया तो बिना देखे हुए वहां पर गरीब लोगों के पट्टे काट दिए गए। अब इस तरह से जो एनक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इस वजह से भी वहां पर
1: मतलब हमने एक जरूरत को पूरा करने के लिए उससे बड़ी जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। और जब समय आया तो शायद फिर न जरूरत ये पूरी हुई न वो हुई, उसमें तो हम कहीं चूक रहे हैं अपनी प्लानिंग में, अपने विकास की दौड़ में, या जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं एक दूसरे के विरोधाभासी काम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कहां से अब जैसे अब टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी युग है, चीजें आ रही हैं उसमें। अब समरसेबल आ गया, पहले हम भाई रस्सी बाल्टी से पानी पीते थे, फिर हैंडपंप आ गया तो उससे, लेकिन मेहनत होती थी, 2 बाल्टी का जो काम था हम कई बार एक से ही कर लेते थे, लेकिन अब समरसेबल चल रहा है, चला के भूल जाते हैं। तो अतिरेक का जो दोहन है चीजों का, जो

0: कृति के अंदर है, तो ये भी तो संवेदनशीलता को दिखाता है।
1: बिल्कुल
0: वहां भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि विकास तो हमने कर लिया, चलो ठीक है, अच्छा है भाई, नीचे पानी है उसको खींच लेंगे, सबको एक बड़े समुदाय को दे देंगे, लेकिन अब तो घर घर में सबमर्सिबल लग रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज फिर कहीं उसमें बाधक हो रही है उसमें।
1: बिल्कुल, ये चीज भी बाधक है जल संरक्षण के अंदर, क्योंकि आज ये कहा जाता है, वास्तविकता क्या है सिंह साहब, कि लोगों की जो सोच है वो सोच क्या है जल के बारे में, कि ये तो जल जो है मुफ्त की चीज है,
0: मुफ्त की चीज है।
1: और मुफ्त की वजह से ही हम इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं बन पा रहे हैं,
0: जबकि
1: क्योंकि
0: मुफ्त में हमें प्रकृति ने दिया
1: प्रकृति
0: है,
1: ने दिया है।
0: क्योंकि सबके लिए आवश्यक है भाई, इसमें अमीर गरीबी की कोई बात नहीं है, तो उन्होंने तो प्रकृति ने तो इतना लुटा दिया,
1: जी
0: लेकिन हम कहीं उसके भाव में चूक कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये मिल रहा है अफरात में तो मुफ्त है, तो फिर इसको इसके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है,
1: जवाब देनी
0: इस
1: है
0: भाव से हम बच रहे हैं,
1: जी,
0: ये आप कहना चाह रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं। तो कहां से शुरुआत होगी फिर, कहीं से तो शुरुआत हो
1: इसकी
0: ना।
1: शुरुआत केवल केवल जो हो सकती है वो जन एक जल आंदोलन, जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं देश के अंदर, एक जल आंदोलन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि लोगों की जो सोच है वो बदले। जब तक, चाहे सरकार कितना भी प्रयास कर ले,
0: जी जी जी
1: जब तक जन सहभागिता इस कार्यक्रम में नहीं होगी, जब तक जल का संरक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि आज पूरे दुनिया के अंदर बात हो रही है 3 R की हो रही है, 3 R, जिसमें एक कहा जाता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो उसमें कहा गया है कि रिड्यूस का मतलब जल का समुचित उपयोग करें,
0: उपयोग करें।
1: अनावश्यक उसका यूज ना करें। रिसाइकल में यानी उसको रिसाइकल हम करें, पानी को
0: पानी को दोबारा से उपयोगी बना
1: उपयोगी
0: लें।
1: बनाएं, और रीयूज उसी पानी को हम यूज करें
0: यूज
1: बार
0: कर
1: बार,
0: लें,
1: उसको
0: तो एक वाटर साइकिल
1: वाटर
0: बना लें,
1: साइकिल बन जाए।
0: जैसे प्रकृति का है कि
1: जी
0: बांस बन के उड़ेगा, बादल बनेंगे,
1: बिल्कुल
0: बारिश होगी, फिर उसको संरक्षित कर लीजिए, तो ऐसे ही हमें अपने
1: बिल्कुल
0: मतलब प्रकृति जैसे संरक्षित करती है, तो
1: जी
0: आदमी को भी ये साइकिल और ये जो चक्र है इसका, उसको करना पड़ेगा, उसमें व्यवहार में लाना
1: व्यवहार
0: पड़ेगा,
1: में लाना
0: और
1: पड़ेगा
0: वो बात एक विचार से और सोच से ही पैदा होगी, जिसको व्यक्ति को मिल करके एक संगठन बनाना होगा, आंदोलन बनाना होगा, और घर घर में इस विचार को लेके जाना होगा कि बिना पानी के संरक्षण के शायद जीवन संभव नहीं है, और जीवन जीना है और समाज को बचाना है, तो फिर हमको इसको करना ही पड़ेगा,
1: जी,
0: कॉस्ट हमारी चाहे कोई भी आए
1: कोई भी आए।
0: उसमें। कुछ और कहना चाहेंगे इसमें?
1: बिल्कुल, दूसरा ये है कि जल का जो हम खास करके घरेलू जो उपयोग करते हैं, घरेलू उपयोग के अंतर्गत यानी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे अधिक जो जल की आवश्यकता होती है वो हमको कृषि में और उद्योगों में आवश्यकता होती है। दूसरा यह है कि उद्योगों में जो पानी हम प्रयोग करते हैं उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, कृषि में भी हमको अपने कृषि जो पैटर्न है, कृषि प्रणाली है, उसको बदलना होगा, सिंचाई प्रणाली को बदलना होगा। इन सब पर जब हम नजर डालते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं कि जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी, जो
0: तकनीकी
1: तकनीकी थी पानी की, वो कहीं ना कहीं खो गई है। हमको पुरानी उसी तकनीक की को लेकर के और नई तकनीकी जोड़ करके हमको सामंजस्य बैठाना होगा, तभी हम पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं।
0: पुराना ज्ञान और आधुनिक
1: आधुनिक
0: तकनीकी का
1: तकनीक
0: सम्मेलन करके कुछ एक ऐसे व्यावहारिक तरीके
1: जी
0: हम लेकर के आए जिससे हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए, और जो वातावरण और प्रकृति के संरक्षण की बात है उसको भी कहीं हम धरोहर के रूप में संजो करके रख सकें। डॉक्टर साहब, आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, इस पानी के संरक्षण के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता बनती है, विचार और बात तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन समय थोड़ा कम है, लेकिन बहुत उपयोगी बातें आपने बताई, अगर व्यक्ति इस पर अमल करेगा तो कुछ शायद अच्छा हम कर पाए। आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पानी के उपयोग से जुड़ी हमारी संवेदनशीलता इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे राजवीर सिंह और इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
1: बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 8 जुलाई 2026 को जननायक चंद्रशेखर स्मृति दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जननायक चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ के तत्वाधान में लोक स्मृतियों में चंद्रशेखर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चंद्रशेखर जी ने जो संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पूर्ण किया। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। संपूर्ण जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी गयी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि
2: चंद्रशेखर जी के साथ मेरी बचपन की एक अमिट स्मृति अंकित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमें चंद्रशेखर जी को सुनने और उनसे मिलने के लिए पास के गांव में ले जाया गया। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर बेहद ही सरल और स्वाभाविक भोजपुरी में उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण निश्चित होगा। ना कोई बड़े वादे, ना ऊंचा मंच, ना महंगे वस्त्र, एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की प्रतिछाया चंद्रशेखर जी।
1: बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 29 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में दीक्षांत से पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 10 गांव गोद लिया गया है, जिसमें गांव के शिक्षा, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समाज कार्य विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने बताया कि
3: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अष्टम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में समाज कार्य विभाग द्वारा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषाई दक्षता, आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
1: बलिया में दानवीर भामाशाह की जयंती विकास भवन सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही भामाशाह के चित्रों एवं लघु फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के 10 प्रमुख करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न नए उद्यमियों एवं करदाताओं को भी सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बलिया के उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत सत्तू और बिंदी के आकर्षक स्टॉल लगाए। वहीं खादी ग्राम उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और उत्पादों की जानकारी दी गई। बलिया जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय एवं कार्यवाहक मुख्य

0: चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को संचारी रोगों से बचाव की शपथ दिलाई गई तथा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय ने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान और समय पर उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेक्टर वार्न डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग सहित अन्य संचारी रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगी।
1: बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
2: फिरोजाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने घटना से 40 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका सभी ने सम्मान करते हुए तारीफ की जा रही है। 1.5 वर्ष के मासूम की हत्या करने वाले को दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा खुले न्यायालय में सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि 30 मई 2024 को दिन दहाड़े 2:30 बजे जितेन पाठक उर्फ बिराज ने फिरोजाबाद के थाना शुकाहबाद क्षेत्र यादव कॉलोनी में मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि ये घटना जिले में चर्चा से बनी हुई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया और मात्र 1 माह 9 दिन में न्यायालय ने फैसला आ गया। DGC राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि
3: 1.5 वर्ष के बच्चे इस विराज अभियुक्त जो है निर्मम हत्या की थी। DM साहब जनपद फिरोजाबाद और SSP साहब विशेष निर्देशन था, उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है।
2: फिरोजाबाद जिले में तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अलग अलग हादसों में जन एवं पशु हानि हुई है। पिछले दिनों फरियाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़रई गांव में तेज आंधी और तूफान के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 ग्रामीणों की असमय मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम अचानक खराब होने और तेज हवा चलने के कारण गाँव के पास ही स्थित एक पुराना और विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पर जा गिरा। जिस समय ये घटना घटी उस समय पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन आवेदन करने की पर फ्री शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को शासन द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी पर चलते हुए फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार शासन के आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि
4: सरकारी स्कूल नजदीक नहीं होते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। उसके तहत सरकार ने जो है RTE एक्ट के तहत प्रावधान किया हुआ है। जो जनरल के लोग हैं 1 लाख से इनकम कम है वो, साथ ही साथ जैसे SC ST के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है मार्च में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है और अप्लाई करके वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो RTE एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज जो है उन्हीं के खाते में प्रोवाइड करा देती है।
2: फिरोजाबाद में स्वस्थ शासकीय राज चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर योगेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यहां किडनी रोगियों को बेहतर, त्वरित और निःशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी जन कल्याणकारी क्रम में चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससेरिया द्वारा 5 नई आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया गया। इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को भी इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्व स्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत कार्यक्रम आबोहवा, विषय है ओजोन परत का क्षरण। आलेख और वाचन है श्री सतीश शर्मा का।
1: श्रोताओं, मनुष्य द्वारा लगातार प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप कर मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति के सामने ला खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि जलवायु तथा वातावरण को भी नहीं बख्शा है, जिसकी वजह से जीवन संचालित होता है। औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में इंसान ने कई समस्याओं को पैदा कर लिया है। इन्हीं में से एक समस्या है ओजोन परत का क्षरण। अब हम बात करते हैं कि ओजोन परत क्या है। अगर हम ओजोन परत को सुरक्षा परत कहें तो इसमें कोई संशय नहीं होगा। ओजोन परत एक हल्के नीले रंग की गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ओजोन परत धरातल से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में उपस्थित एक परत है जो कि सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जो वायुमंडल में प्रवेश करने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी तक उन्हें पहुंचने से रोकती है। परंतु दिनों दिन औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत को खतरा पैदा होने लग गया है, जो कि ओजोन छिद्र के रूप से जाना जाता है। लेकिन ओजोन छिद्र कोई छिद्र न होकर ओजोन परत का लगातार होने वाला क्षरण है, जो वर्तमान में संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्या बन गया है। ओजोन परत के क्षरण से होने वाले दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले हम ओजोन परत को नष्ट होने वाले कारणों व स्रोतों का जिक्र करेंगे। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन का यौगिक है। पराबैंगनी किरणें वातावरण में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया कर क्लोरीन व फ्लोरीन बनाती है, जो ओजोन गैस के अणुओं का ऑक्सीजन व नवजात ऑक्सीजन में विघटन कर देती है, जिससे ओजोन परत लगातार नष्ट हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के वातावरण में उत्पन्न होने की बात करें तो यह गैस वातानुकूलन, रेफ्रिजरेशन आदि के मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। इसके अलावा जेट विमान से निकलने वाले धुआं, उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है। ओजोन परत के नष्ट होने से कई प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने से पृथ्वीवासी जैसे मनुष्य, जंतुओं आदि पर अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। इनमें मुख्य हैं त्वचा संबंधी रोग, जिसमें त्वचा कैंसर, एलर्जी आदि प्रमुख हैं। आंखों का मोतियाबिंद तथा साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना इसके दुष्प्रभावों में से एक है। साथ ही ओजोन परत क्षरण से जैव विविधता जैसे वनस्पतियों, जलीय जीवों, स्थलीय जीवों की संख्या में भी असंतुलन देखने को मिला है। इसका सीधा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे कोटा संभाग में स्थित दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष 10 से 15 पादप प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तथा सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। ओजोन परत को नष्ट होने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाए, साथ ही इनके नए विकल्पों की खोज की जाए। विघटन प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, साथ ही इनके स्रोतों का मानक परीक्षण भी करना चाहिए। परफ्यूम, डिओड्रेंट, रूम फ्रेशनर आदि का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही जितने भी विकसित देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करना चाहिए। इन सब संरक्षणों से प्रमुख है कि मनुष्य को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, वृक्ष को कटने से बचाना होगा, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करना होगा। ओजोन परत के संरक्षण से होने वाले लाभों से मनुष्य को जागरूक करना होगा, साथ ही जन चेतना में हर आदमी की भागीदारी को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना होगा। साथ ही शिक्षण पद्धति में पर्यावरण शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया जा सके।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था ओजोन परत का क्षरण। आलेख और वाचन था श्री सतीश शर्मा का।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है।

0: No traffic, no tension.
1: Easy access and seamless travel. Noida International Airport, where dreams take off.
2: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ. शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बुक योर टिकट्स नाउ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान.
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर. प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण. प्रस्तुति है जितेंद्र सिंह की, संयोजन है OP सिंह का.

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अनमोल धन की जो हर व्यक्ति के पास समान रूप से मिलता है, लेकिन उसका सही उपयोग हर किसी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और वो अनमोल धन है समय। दोस्तों, आज का हमारा विचार है कि समय का करें सम्मान, क्योंकि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उनका सम्मान करता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कीमत समझना और उसका सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। हम अपने आसपास ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो समय का सही प्रबंधन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, व्यापारी हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या कोई कलाकार हो, हर सफलता के पीछे समय का अनुशासित उपयोग छिपा होता है। दूसरी ओर, समय की अनदेखी कई अच्छे अवसरों को हाथ से निकल जाने देती है। समय का सम्मान करने का अर्थ केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही समय पर पूरा करना भी है। यदि हम समय पर उठें, अपने कार्यों की एक योजना बनाएं, अनावश्यक टालमटोल से बचें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः ही दिखाई देने लगता है। और वो एक कहावत भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करे को कब। यानी यह हमें सिखाती है कि आवश्यक कार्यों को टालना नहीं चाहिए। आज का काम आज ही पूरा करने की आदत हमें अधिक आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। समय का सम्मान केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी जिम्मेदारी का परिचय है। यदि हम किसी से मिलने का समय तय करते हैं, या किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, या किसी कार्य को सही समय पर पूरा करने का वायदा करते हैं, तो समय पर पहुंचना या उस काम को समय पर पूरा करना हमारे व्यक्तित्व की विश्वसनीयता को दर्शाता है। प्रिय श्रोताओं, हर दिन हम 24 घंटे हमको मिलते हैं। यही 24 घंटे किसी को नई ऊंचाइयां देते हैं और किसी के लिए यूं ही बीत जाते हैं। अंतर केवल इस बात का होता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कैसे करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आ सकता, और आने वाला पल भी कुछ ही क्षणों में अतीत बन जाता है। इसलिए अपने हर पल को सार्थक बनाइए, अपने समय का सम्मान कीजिए और जीवन के हर अवसर का भरपूर लाभ उठाइए।

0: श्रोताओं, जैसा कि सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आज हमारे साथ हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री विकास चंद्र जी। आज हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या माता पिता दोनों की 1 मार्च 2020 के बाद किन्हीं कारणों से मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को उनके शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए आवश्यक है कि बच्चे की आयु 23 वर्ष से कम हो और उसका किसी विद्यालय में प्रवेश होना जरूरी है, यानी कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है तो उस पर ये शर्त लागू नहीं होती है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे बच्चों के माता पिता, अगर किसी एक की मृत्यु हुई है तो दूसरे माता या पिता का एक आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो अधिकतम 3 लाख रुपये वार्षिक हो सकता है। और अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में किसी भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से 23 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए सरकार के द्वारा 2,500 रुपये की प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
0: और इसके अलावा हम चाहेंगे और भी कुछ योजनाओं के बारे में

0: पाए।
1: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाएं जनपद में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेके चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड भी है। यह उन बच्चों के लिए है जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड के काल के दौरान हुई थी। ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 18 वर्ष तक की आयु के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश की ऐसी बच्चियाँ जिनके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए है और परिवार में 2 बच्चे हैं, ऐसी बच्चियों को 6 चरणों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें बालिका के जन्म पर 5,000, 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर 2,000, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 3,000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए और 10वीं या 12वीं पास करने के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
0: जैसा कि आपने जो कन्या सुमंगला योजना में बताया कि विभिन्न चरणों में इसमें राशि दी जाती है, तो क्या ये योजना शुरू से ही इसके लिए अप्लाई करना होगा या किसी भी चरण से इसका लाभ लिया जा सकता है?
1: आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह योजना इतनी सरल है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी बालिका को पहले चरण का लाभ मिला है तभी दूसरे चरण का मिलेगा। किसी भी चरण में बच्चा प्रवेश कर सकता है। मान लीजिए उसे 2 चरण का लाभ नहीं मिला था, लेकिन कक्षा 1 में प्रवेश करने पर उसे लाभ मिलेगा और उसके बाद फिर कक्षा 6, 9 और 12 की जो चरण पर जो लाभ मिलते हैं वो भी मिलेंगे।
0: तो क्या परिवार में एक पुत्री दो पुत्री पर ये योजना लागू है, कुछ ऐसी भी सीमा है?
1: जी हाँ, परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए और बच्चियों को ही चूंकि लाभ मिलता है, तो अगर परिवार में 1 बच्ची है तो उसे लाभ मिलेगा। अगर दोनों बच्चे लड़कियां हैं और योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर तीसरा बच्चा हो जाता है, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
0: अगर दूसरी लड़की जो है अगर जुड़वा पैदा होती है तो क्या लाभ मिलेगा दूसरी बार में?
1: हाँ जी, ऐसी कंडीशन में अगर दूसरे प्रसव के समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब तीनों को लाभ मिलेगा।
0: इसी के साथ मिशन वात्सल्य के बारे में और बताएं कि इसका क्या उद्देश्य है?
1: भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के बच्चे, एक तो देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे और दूसरा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे आते हैं। इन दोनों प्रकार के बच्चों को विभिन्न प्रकार की विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। अगर कोई निराश्रित बच्चा है तो उसके लिए हमारे जनपद में बाल गृह बालक है, बाल गृह बालिका है, बाल गृह शिशु है। अगर कोई अपचारी बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनके लिए राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर है, उसमें बच्चों को रखा जाता है। साथ ही हमारे यहाँ बच्चों के देख रेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति, अपचारी बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड आदि की व्यवस्था हमारे यहाँ है।
0: इसी के साथ आपके विभाग द्वारा एक स्पॉन्सरशिप योजना और संचालित की जाती है, इसके बारे में और बताएं कि ये योजना क्या है?
1: मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना संचालित है। इसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि कोई बाल श्रम से मुक्त कराया गया बच्चा है, भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया बच्चा है, या किसी संस्थागत देखभाल में बच्चा रहा है और वहाँ से मुक्त होकर निकलता है ऐसे बच्चों का, या कोई दिव्यांग बच्चा है, या ऐसा कोई बच्चा है जिसके माता पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए, उनके पोषण के लिए 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का अगर बच्चा है तो उसे 4,000 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता मिलती है।
0: और इसी के साथ कुछ जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं उनके बारे में और बताएं।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनपद में और हमारे प्रदेश में महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जनमानस को प्रेरित करते हैं कि वो बालिकाओं को जन्म दें, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें। इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम जनपद स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही बहुत ही एक लोकप्रिय योजना है पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसे सामान्य भाषा में वो विधवा पेंशन के नाम से जाना जाता है। हम जनपद में लगभग 51,000 लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं। इस योजना में ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनकी आय अधिकतम 2 लाख रुपये वार्षिक है, ऐसी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से विधवा पेंशन दी जाती है और यह DBT के माध्यम से उनके खाते में जमा होती है। और यह योजना पूरी तरीके से ऑनलाइन है कि इसके लिए महिला को या किसी भी आवेदनकर्ता को कहीं भटकने की

0: आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन ही स्वीकृति की प्रक्रिया है और सीधे डीबीटी के माध्यम से उनको धनराशि की प्राप्ति होती है।
1: और इसी के साथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत भी कुछ लाभ दिया जाता है, तो उसके बारे में और बताएं।
0: जी हाँ, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष ऐसी योजना है जिसमें जघन्य हिंसा से शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित की जाती है। पीड़िताओं को भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ परिस्थितिवश यदि ऐसा कोई अपेक्षित है तो पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा हेतु क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना में आईपीसी और अन्य पॉक्सो आदि अधिनियमों के अंतर्गत 9 धाराएं हैं जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है, जैसे 326A आईपीसी के

0: और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित की जाती है। पीड़िताओं को भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ परिस्थितिवश यदि ऐसा कोई अपेक्षित है तो पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा हेतु क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना में आईपीसी और अन्य पॉक्सो आदि अधिनियमों के अंतर्गत 9 धाराएं हैं जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। जैसे 326A आईपीसी के तहत अगर किसी महिला पर एसिड अटैक होता है तो उसके जलने के प्रतिशत के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। 304B अगर किसी महिला की दहेज हत्या हो जाती है और उसके कोई अवयस्क बच्चे हैं तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और उनको FD किया जाता है ताकि बालिग होने पर उन वो धनराशि को प्राप्त कर सके, अपनी शिक्षा और ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी तरीके से 376A, 376G और 376D के अंतर्गत भी 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार से अगर बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध होता है 4 पॉक्सो या 6 पॉक्सो में तो उनको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और 14 पॉक्सो एक्ट के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति। और यदि किसी बच्चे के साथ कोई दुराचार होता है और पॉक्सो की धारा 4 या 6 में मुकदमा दर्ज होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 10 लाख रुपए तक दिए जाने का प्राविधान है।
1: और इसी के साथ सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में और हमारे जनपद में भी वुमेन वन स्टॉप सेंटर भी खोले गए हैं, तो इनके बारे में बताएं इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका लाभ लिया जा सकता है।
0: देखिए, भारत सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। मथुरा जनपद में हमारे 2 वन स्टॉप सेंटर हैं, एक वृंदावन में है और एक मथुरा सदर में है। इन सेंटर के माध्यम से एक छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जैसे चिकित्सा, काउंसलिंग, उनका अगर रिपोर्ट लिखाना है या उनके लिए क्रैच है, मेस है, 5 दिन के रहने की व्यवस्था आदि, और अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू वैन आदि की सुविधाएं हैं। हिंसा से पीड़ित इन महिलाओं को एक छत के नीचे 5 दिवस तक हम रखते हैं और उनकी जो भी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं और उनकी काउंसलिंग आदि के माध्यम से उन्हें ट्रॉमा काउंसलिंग आदि करके उन्हें हम सहायता पहुंचाते हैं।
1: और निराश्रित महिलाओं के लिए भी आश्रम की व्यवस्था भी हमारे जनपद में संचालित है।
0: जी हाँ, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश का इकलौता कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन वृंदावन में स्थित है। इसमें 1000 वृद्ध महिलाओं को और विधवा महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है और ये समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय सदन है। और मैं आपके माध्यम से सामान्य जनमानस से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई वृद्ध और विधवा महिला है जिसके जीवन यापन का संकट हो, निराश्रित है, नैतिक संकट से ग्रस्त है, तो ऐसी महिलाओं को आप कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन में लाएं ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें और उनके जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार कर सकें।
1: और इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
0: जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे कि बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं तक या योजनाओं तक आम व्यक्ति या बच्चे या महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा 2 विशेष हेल्पलाइन चलाए गए हैं। एक है 1098 यानी कि 1098, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन कहते हैं। अगर कोई भी बच्चा संकट में है, परेशानी में है, निराश्रित है, कहीं गुम हो गया है तो वो यदि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है 1098 पर, तो हमारी जो एक समर्पित डेडिकेटेड टीम है वो संपर्क करती है और उस बच्चे को अपने संरक्षण में लेके और जो भी उसे तात्कालिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूर्ण कराती है। यदि बच्चा अपना नाम पता या अपना पहचान या निवास का विवरण देने में सक्षम नहीं होता है तो हम मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित अपने बाल गृह या शिशु गृह में या बालिका गृह में रखते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से उस बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने माता पिता या परिवार तक पहुँच सके। इसी तरह महिलाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन है। अगर कोई महिला संकटग्रस्त है, किसी समस्या में है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है या किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है तो 181 टोल फ्री नंबर पर कॉल करती है। हमारी डेडिकेटेड हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी टीम पहुंचती है, उसे रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर लाती है और उसे भोजन, वस्त्र, आवास के साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से पता करने का प्रयास करती है कि इस महिला का आवास कहाँ है, क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं।
1: आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया, अगर इन योजनाओं के लिए जो भी योग्य व्यक्ति है जो कि इस अर्हता श्रेणी में आता है तो वो कैसे आवेदन कर सकता है?
0: ये

0: योजनाएं ऑनलाइन हैं
1: जी
0: और ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति कार्यालय में आके इसकी जानकारी करना चाहता है तो प्रत्येक जनपद में जिला उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय है, सामान्यतः या कलेक्ट्रेट या विकास भवन परिसर में होता है। आप वहाँ पर पहुँच के इस योजना का फॉर्म ले सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट की भी जानकारी ले सकते हैं, या किसी प्रकार की आपकी सुविधा या जानकारी चाहिए तो आपको मिल सकता है। मथुरा में कलेक्ट्रेट परिसर में रूम नंबर 43 में जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय है। आप इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप निसंकोच ऑफिस आवर में यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
2: श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा श्री विकास चंद्र जी। और जैसा कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी, जागरूक भी किया, और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आज आपने हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और लगभग सभी योजनाओं के बारे में जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तहत रविवार को हमारे जनपद मथुरा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक ही दिन में 33.61 लाख पौधों का रोपण किया गया। गोरवा वन ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना विकास मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी ने की। जनपद में 33,25,200 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, इसके सापेक्ष रविवार को 33,61,200 पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान एक पेड़ माँ के नाम का संदेश देते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बरगद, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने अर्जुन, विधायक मेघश्याम सिंह और जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने मौल श्री का पौधा रोपा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन, भूमिगत जल संरक्षण और जलवायु सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने प्रत्येक नागरिक से जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया और इस कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत रविवार को गोवर्धन पर्वत की तलहटी स्थित दान घाटी क्षेत्र में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मित्रों, वास्तव में वृक्ष हमारी अमूल्य धरोहर हैं और इनका संरक्षण और संवर्धन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हरे क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और अधिक वृक्ष होने से तापमान भी नियंत्रित रहता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो इसलिए वृक्षारोपण करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए न केवल पौधा लगाएं बल्कि उसकी उचित देखभाल भी करें। और जब आप पौधा लगाएं तो ये देखें कि उसकी सुरक्षा कैसी हो सकती है, उसमें समय से खाद दें, समय से पानी दें और रोज़ उसकी देखभाल करें ताकि आपका लगाया हुआ पौधा एक बड़ा वृक्ष बन सके। और ये अभियान, ये पहल तभी सार्थक होगी जब हम हर पौधे की देखभाल करेंगे। इसलिए वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण करें। और अब बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तो आज की खबरों में है, राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले के आयोजन में अब सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हैं। मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को तहसील सभागार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद 18 अलग अलग विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई और कहा गया कि इस बार मानसी गंगा और राधा कुंड की सजावट कासगंज के सोरोंजू की तर्ज पर की जाएगी और मुड़िया पूर्णिमा मेले के भंडारे और प्याहू लगाने वालों के लिए अनुमति मिलना शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन के निर्देश पर बस स्टैंड के सामने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के काउंटर बनाकर यह अनुमति दी जा रही है और डीएम ने बताया है कि 20 जुलाई तक ही भंडारे एवं प्याहू की सशर्त अनुमति दी जाएगी, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि यानी 13 जुलाई इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज के दिन को भारत में आज का दिन जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1931 में शहीद हुए लोगों की याद में समर्पित है। और इसके अलावा आज ही के दिन सन 1929 में स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। और आज ही के दिन सन 1908 में महिलाओं को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में आज सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565, ये हमारा कोड नंबर है, और फोन नंबर है 2530135, इस पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधी रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीज, फोड़े फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो इसके समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 का। सूचना समाप्त हुई और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का हमारे केंद्र मथुरा वृंदावन से।

किनारा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल लिखे थे गुलजार ने, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत महबूबा फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की।

कोरा कागज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, बोल थे हसरत जयपुरी के, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना खिलौना फिल्म में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

सदमा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत को लिखा था इलैया राजा ने और क्षमा कीजिएगा, गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी इलैया राजा ने। कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में आज सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड नंबर है और फोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधी रोग, कारण, लक्षण एवं निदान इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीज, फोड़े पुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं से ग्रस्त है तो समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर गुनीत वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई और आइए अब बढ़ाते हैं अपने संगीत के कार्यक्रमों को और आपको सुनवाते हैं शंकर हुसैन फिल्म से ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: कभी तो हंसाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में। गीत को लिखा था योगेश ने और धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
0: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

मनाडे और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म का ये गीत। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक दिन का राष्ट्रीय शोक होने के कारण आज आप फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी नहीं सुन पा रहे हैं।

कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई यानी आज अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-1222-5575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील, मुहासे, ब्लैक हेड्स, आँखों के नीचे काले घेरे, दाँत, खाज, खुजली, हर्पीज, फोड़े फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि

समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत से, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 13 जुलाई 2026 यानी आज, समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

जीवन का एक अटल सत्य है साथियों, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन विदा भी होना है। किंतु कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल उनके परिवार या उनके देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका दृष्टिकोण, उनका नेतृत्व और उनका निर्णय पूरी दुनिया के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा करेंगे कतर के पूर्व अमीर और फादर अमीर हिज हाइनेस शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की पावन स्मृति को, जिनका 12 जुलाई 2026 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। यह भारत और कतर के बीच गहरे और आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। दीप बुझ जाता है पर उसकी रोशनी राहें दिखाती रहती हैं। महान व्यक्तित्व विदा हो जाते हैं पर उनके विचार पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मिट्टी का तन एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कर्मों का उजियारा सदियों तक जगमगाता है।

साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। और आइए अब बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर, और साथ ही आपसे चर्चा करते रहेंगे कतर और भारत के आपसी मैत्रीय संबंधों के बारे में। और आज हमसे जुड़ चुके हैं अपना संदेश भेजकर मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा का। ये हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। हमारे अगले श्रोता साथी हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हमसे जुड़े हैं। संदेश मिल चुका है हमें श्री सुधाकर, राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना का। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से आप हमसे जुड़े हैं। उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का संदेश भी हमें मिल चुका है। कलानौर के नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा हमसे जुड़े। एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान का संदेश भी हमें मिला। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, प्रखर पल्लवी, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं अकोला के केशरद पाचपुर, श्रीमती शोभा पाचपुर, विहान बाबू और बेबी वैदेही पाचपुर। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव भी हमसे जुड़ चुके हैं। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। राजनगर कांति निकेतन से हमसे जुड़े हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता और दीप्ति रानी। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। रसेड़ा छत्तीसगढ़ के मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू का संदेश भी हमें मिल चुका है। साथियों, शेख अहमद बिन खलीफा अल्थानी केवल कतर के शासक नहीं थे, बल्कि आधुनिक कतर के निर्माण के प्रमुख शिल्पकारों में वे गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व में कतर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कूटनीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास और दूरदर्शी नीतियों ने कतर को विश्व मंच पर एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, शिक्षा, विकास और मानवीय मूल्यों में निहित होती है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तब यह भी स्मरण कर रहे हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सक्षम और अधिक सम्मानित बनाकर जाए। जीवन वर्षों से नहीं, वर्षों में किए गए श्रेष्ठ कार्यों से बड़ा बनता है। नेतृत्व पद से नहीं, दृष्टि, सेवा और समर्पण से जन्म लेता है।

साथियों, भारत और कतर के संबंध में केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों से भी जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच वर्षों से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच मजबूत संपर्क रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी रही है। कतर भारत के लिए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कतर की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति कतर में, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं। भारतीय समुदाय ने कतर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों देशों के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत बनाया है। ठीक उसी तरह

से जिस तरह से आपका और हमारा मजबूत संबंध आपसी इसी तरह से बना हुआ है। साथियों, आप हमसे जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। आप और हम भावभीनी श्रद्धांजलि आज कतर के उस महान नेता को अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल अपने देश में अपने देश के लिए जिया और उसकी उन्नति की, साथ ही उसके साथ साथ अन्य देशों से भी जो मित्रता निभाई उसको आज हम सभी याद कर रहे हैं। हमारे साथी, हमारे अगले फरमाइशकर्ता हमसे जुड़े हैं दहीगांव नांदुरा से ढोंडू भातुरकर, मंगला, विवेक कुमार, भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान भातुरकर, फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़े हैं तेलंगाना चोटुपल से कस्तूरी रामुडू, वुमा देवी, प्रबुद्धि नारायणा। अगला संदेश हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र के नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर के जुनैद मुजाबर, सबीहा मिखाइल, जैनब, बुलढाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र के अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार का संदेश हमें मिल चुका है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्य दुभूषण, संस्कृति पौरुष हमसे जुड़े हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल का संदेश भी हमें मिला। तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन हमसे जुड़े हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, पंचकुला चंडीगढ़ के राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। अक्रम हुसैन प्रिंस उर्फ डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार के, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन भी हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है ताज मोहन अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां का आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा का संदेश दादरी गेट भिमानी से हमें मिला। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्बी, हिमाक्ष हमसे जुड़े हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, बुलढाणा महाराष्ट्र के वासुदेव बोधवड़े, अनीता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े का संदेश हमें प्राप्त हुआ। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी। साथियों, आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, रिश्ते केवल सीमाओं से नहीं बनते, विश्वास, सम्मान और सहयोग उन्हें मजबूत बनाते हैं। भारत और कतर की मित्रता दो देशों के बीच ही नहीं, दो समाजों, दो संस्कृतियों के बीच भी एक सेतु की तरह है। महान नेता चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते और मूल्य आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज हम उस व्यक्तित्व को नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता को भी नई दिशा दी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार और कतर की जनता को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। श्रद्धा के ये पुष्प अर्पित करते हुए हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनेरिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता मास्टर अलकबीर का। ये हमसे जुड़े हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके का संदेश भी मिला। हमसे जुड़ चुके हैं बिट्ठल जाधव अंसुया, परंजाधे जाधव, ऑरेंज सिटी नागपुर से छत्रपति, संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज का संदेश भी मिला। अगला संदेश हमारे पास आया है डावकी रोड अकोला के सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव का। अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, कुम्हार गली श्रीरामपुर से, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने का संदेश भी मिला। झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया भी हमसे जुड़े। बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, उमेश, प्रमिला बंछोर का संदेश प्राप्त हो चुका है। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक माही का संदेश हमें मिला। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, प्रकाश जैन नांदेड़ से हमसे जुड़े। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमसे जुड़ चुके हैं। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिल चुका है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम पलक लुबना और यश मंसूरी का। साथियों, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का और आपसे अनुमति लेने का। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में सोमवार 13 जुलाई अपराह्न 1:15 से यानी कि आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आपकी मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दांत खाज, हर्पीज, फोड़े, फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी कि आज 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15।

मिनट से सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं श्री डोरीलाल गोला।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
6: सो इजी।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे डोरीलाल गोला। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में

0: देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर समवे स्वरों में आप सुनेंगे देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन इन सजीव कार्यक्रम में विषय होगा, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर गुनीत गांधी। अपराह्न 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:30 पर। युवा भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी 5:30 पर, जिसमें आज की बात के अंतर्गत युवाओं में तकनीकी एवं डिजिटल कौशल एवं बदलती तकनीक के साथ युवा खुद को कैसे तैयार करें विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे स्वरचित कहानी शिक्षा का महत्व, कहानीकार होंगे अनु सारस्वत। 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में होगी चर्चा किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान का महत्व एवं दूध देने वाले पशुओं का पोषण और दुग्ध उत्पादन बढ़ा

थाने के उपाय। साथ ही आप सुनेंगे ओबी आधारित भेंट वार्ता, पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से मृणालिनी दीक्षित की होगी बातचीत। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 पर आप सुन सकेंगे।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता के अंतर्गत ब्रज की मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े के विषय में जानकारी देंगे वार्ताकार डॉक्टर नरपति देव भारद्वाज। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे संध्या 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी 7:31 पर संध्याकाल में आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे। दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 ढोला प्रसंग कंपलागढ़ की लड़ाई कलाकार प्रभु दयाल और साथियों की आवाज़ में आप सुन सकेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत पखावज वादन कलाकार श्री रसिक बल्लव के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ताल होगा चौताल 12 मात्रा के अंतर्गत और हारमोनियम पर संगत देंगे श्री परवेज। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। वनता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 से यानी कि आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं यदि आप कील मुहासे ब्लैक हेड्स आँखों के नीचे काले घेरे दांत खाज खुजली हर्पीज फोड़े फुंसी मत्स्य एलर्जी फंगल संक्रमण सोराइसिस रिंकल्स हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी कि आज 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी विवरण अभी आप सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वन तालोक।
1: यूं तो आईने में खुद को कई बार संवार लेती हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे मैं को संवार दे वो आईना कहां से लाऊं। चेहरे की चमक वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन दिल और व्यवहार की खूबसूरती उम्र भर साथ निभाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, बढ़ती उम्र के साथ आपकी खूबसूरती में कोई कमी न हो, इसके लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर शख्स एक दूसरे से जुदा है। इसी प्रकार हम सबकी त्वचा भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसकी देखभाल हमें अलग अलग तरीके से करनी होती है। कभी मौसम का बदलाव, कभी खानपान या अन्य कई कारणों से त्वचा पर असर होता है। त्वचा का महत्व केवल सुंदरता तक नहीं, ये हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। त्वचा का रंग, बनावट और स्थिति कई बार शरीर के समग्र स्वास्थ्य का संकेत भी देती है। इसलिए त्वचा की देखभाल केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी और नींद, नियमित सफाई और अनेक कई प्रकार के हम त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के प्रयोग कर,

0: तो इन सभी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बाद भी अगर खुजली, कील, मुहासे, दाग धब्बे या त्वचा पर अन्य प्रकार की समस्याएं हो जाएं, तो उसके लिए हमें अपनी समस्याओं से समाधान प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं त्वचा रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वन्यतालोक कार्यक्रम में, हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारी साथी, हमारी सहयोगी
1: उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथियों आपसे बता दें कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर गुनीत, त्वचा रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से त्वचा संबंधित रोग कारण, लक्षण एवं निदान। साथियों हमारी त्वचा केवल हमारे सौंदर्य का ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी आईना होती है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण, तनाव, अनियमित खानपान और मौसम में बदलाव का सबसे पहला असर अक्सर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। कभी मुहासे, कभी एलर्जी जैसा कि हमारी साथी दीप्ति जी ने बताया, कभी दांत खाज, कभी बाल झड़ने जैसी समस्याएं, ये आम से खास समस्याएं बन जाती हैं। और हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे और अपनी समस्याओं का निदान करेंगे डॉक्टर गुनीत से। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि हमारा यह कार्यक्रम प्रति माह दूसरे और चौथे सोमवार को प्रसारित होता है। वन्यतालोक कार्यक्रम के अंतर्गत सजीव कार्यक्रम है हमारा। आप हमें हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर 0565 कोड लगा करके फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और साथ ही हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेज कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग अपने चेहरे की खूबसूरती की बात कर रहे थे, यानी कि पूरे शरीर की त्वचा पूरे शरीर से संबंधित होती है, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानकारी हम दिलाना चाहेंगे कि त्वचा रोग आखिर होते क्या हैं और इनके होने के प्रमुख कारण क्या हैं।
2: जी, सबसे पहले त्वचा रोग के लिए हमें अपनी डाइट को अच्छा रखना होता है जी। उसके अलावा हमें अपनी हाइजीन, अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं उन्हें अच्छे से धुल के धूप में सुखाना होता है ताकि त्वचा रोग कम हो। जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस, केबीज, ये सब हमारे कपड़ों, हमारे जैसे टॉवल्स वगैरह हम लोग शेयर कर लेते हैं, उससे फैलती है। कपड़ों को धूप में सुखाने से इट्स लाइक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, रोज चेंज करना चाहिए, रोज धुलना चाहिए। और धूप में सुखाने से अच्छा इफेक्ट आता है कि फंगल इन्फेक्शंस जल्दी चली जाती हैं। फंगल इन्फेक्शंस बहुत रेजिस्टेंट होती हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, त्वचा रोग के बारे में, इसके कारण लक्षण के बारे में आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन साथी बात कर रहे हैं?
3: मैं ये उस पार गांव से, चौक रोड उस पार से बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश
1: जी। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब से।
3: समस्या ये है कि वैसे में चर्म, जैसे मेरी स्किन ठीक है, चर्म रोग कोई है नहीं
1: जी,
3: पर बाकी जैसे गर्मियों के पीरियड में, यानी इससे संबंधित हम क्या यूज करें जिससे हमारी स्किन ठीक रहे,
1: सुरक्षित रहे गर्मियों में, बदलते मौसम में।
3: हाँ, इसके लिए कुछ टिप्स है
1: जी? बिल्कुल, टिप्स डॉक्टर साहब से जानिए आप
2: जी। नमस्कार। गर्मियों जी, गर्मियों में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग। तो स्वेटिंग के होते हुए इंटरट्रेगो, एक मतलब जिसमें हमारी जांग लग जाती है, तो उसके लिए हमें पाउडर वगैरह डालते रहना चाहिए। कुछ एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ पित्त, लाइक मलेरिया होती है एक इन्फेक्शन, वो हो जाती है, उसके लिए भी हमें जैसे एकदम से गर्मी से ठंडे में नहीं जाना और ठंडे से एकदम से गर्म में नहीं आना। जैसे एसी में बैठकर एकदम से हम गर्मी में चले जाते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन, उससे वो डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं
3: जी।
2: बाकी अपनी स्किन को हाइड्रेट रखो, जैसे पानी ज्यादा पियो, हेल्थ के लिए डाइट अच्छे से, हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। जो स्किन होती है हमारी, प्रोटीन ही होती है, तो प्रोटीन डाइट अच्छे से

0: रखोगे तो वो स्किन अपने आप हेल्दी रहेगी।
1: जी।
2: जी, आशा है आपको डॉक्टर साहब की बात समझ में आ गई होगी और आप अपना इसी तरह से ख्याल रखेंगे। आपने हमें
1: हाँ
2: फोन किया, आपका बहुत बहुत
1: बिल्कुल समझ
2: धन्यवाद।
1: में आ गई सर। इसके लिए जानकारी के लिए धन्यवाद
2: जी
1: आपको, आपको भी।
2: जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
3: बहुत स्वागत है आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए और अपना परिचय दे दीजिए।
4: हाँ, मैं बॉलीवुड से पंकज बोल रहा था मैडम।
3: जी जी हमारे डॉक्टर साहब से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए।
4: हाँ, मेरे भाई है, उसको ना शरीर में लाल लाल पचक्के से हो जाते हैं,
3: जी
0: जी
4: और कहते हैं बहुत खुजली होती है उसमें, ये है, और फोड़े बहुत निकलते हैं पैरों में, तुलसी टाइप की उसमें
0: जी जी
4: मवाद पड़ जाता है,
0: जी एक
4: तो ये
0: तो
4: क्या कारण है?
0: एक जो आप रेड स्पॉट्स, रेड रैशेस कह रहे हो, उसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। अर्टिकेरिया के लिए एक्चुअली बहुत सारे कारण होते हैं। आप कारण को डिलीनिएट करना थोड़ा।
4: डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज भी है उसको,
0: जी
4: लाल चटकते से बड़े बड़े पड़ते हैं, बड़े बड़े
0: जी
4: पूरे पेट पे, पैरों में,
0: जी
4: पीठ पे। जी
0: तो
4: सर,
0: ये अर्टिकेरिया होता है। अर्टिकेरिया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ड्रग रिलेटेड भी हो सकता है। आपने बोला कि डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक्स पे वो होंगे, तो किसी दवाई की वजह से भी हो सकता है, किसी खान पान की वजह से भी हो सकता है, जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें होती हैं। तो
4: वो टीचिंग लाइन
0: प्रिजर्वेटिव्स,
4: में, जी टीचिंग लाइन में गर्मी में भी जाता है तो बहुत तेज पसीना आता है उससे, वो खड़ी जाता है। जी
0: जी वो भी एक कारण होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे स्वेटिंग से ज्यादा होते हैं वो कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है, मतलब स्वेटिंग के करके या फिर सूरज की किरणों की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कितने टाइम से आपके भाई को,
4: 1 साल होने आ गया उसको।
0: जी तो इसके लिए कुछ एंटी हिस्टामीन्स, मतलब कुछ जो दवाइयाँ होती हैं जैसे सिट्रिजिन, या सिट्रिजिन से नींद ज़्यादा आती है तो कुछ बिलास्टिन वगैरह जो सेकेंड जनरेशन वाली होती हैं वो स्टार्ट कर सकते हो आप। बिलास्टिन की डोज जो नॉर्मली हम 20 mg देते हैं, उसे अगर 20 mg से नहीं रिस्पॉन्स आता है तो उसे हम 4 गुना बढ़ा सकते हैं एक दिन में।
4: अच्छा, आपका शॉप कहाँ है,
0: जी
4: आप कहाँ बैठती हैं?
0: जी आरके मिशन में आप दिखा सकते हो।
4: आरके मिशन वृंदावन।
0: जी। जी
4: अच्छा, तो ये खत्म नहीं होता बराबर?
0: इसका कॉज हमें डिलीनिएट करना होगा, मतलब कॉज देखकर ही हम इसे ठीक कर सकते हैं कि किस कारण से होता है। कुछ खान पान की वजह से है, को जो भी आपकी दवाई चल रही है उसकी वजह से तो नहीं है। उसके लिए कुछ हमें
4: पैरों में,
0: टेस्ट करवाने होंगे।
4: अच्छा, पैरों में फुंसी टाइप भी हो जाती है, मवाद से पड़ जाता है, वो फूट जाती है, निकलता है।
0: जी
4: ये तो
0: वो
4: आप
0: जो
4: ना मिशन में कितने बजे से बैठती हैं?
0: 8:30 से 12:30।
4: 8:30 से 12:30।
2: जी आप हॉस्पिटल में आइए और आकर के डॉक्टर साहब से मिलिए और अपना जिस तरह से उन्होंने बताया है निर्देशानुसार चेकअप कराइए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं, पहले जान लेते हैं उनकी समस्या।
5: हेलो
2: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: हेलो मैडम, नमस्कार डॉक्टर साहब, कोई मेरा नमस्कार मैडम।
2: हाँ नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
5: मैडम मैं विष्णु बोल रहा हूँ मथुरा से। मैडम
2: जी, विष्णु जी अपनी समस्या डॉक्टर साहब से बताइए।
5: मैडम मेरे क्या है, गर्मी गर्मी हो या सर्दी, मैडम चेहरे पे क्या है दाने दाने रहते, पंखे हो जाती है छोटी छोटी एरिया,
0: जी पिंपल्स पिंपल्स हो जाते हैं।
5: और मैडम यही चीज, सुनो सुनो मैडम,
0: जी
5: यही चीज मेरे पैरों पे भी रहती है मैडम, छोटे छोटे दाने होते हैं और वही वही बड़े बड़े दाद हो जाते हैं फिर मैडम।
0: दाद होते हैं या पिंपल्स होते हैं?
5: पिंपल्स तो चेहरे पे होते हैं
0: जी, और दाद
5: और ये
0: है
5: पैरों पे।
0: पैरों पे दाद होते हैं।
5: हाँ
0: देखो
5: मैडम,
0: पिंपल्स के लिए दवाइयाँ चलती हैं वो देख उसके अलावा आपको ऑयली ऑयली चीजें में रोकथाम करना होगा, जैसे ऑयली चीजें कम खानी है। और फंगल इन्फेक्शन जो आप दाद कह रहे हो, दाद के लिए भी एंटी फंगल्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और एंटी फंगल्स का ये होता है, खाने वाली टेबलेट होती है और लगाने वाली होती है। इनकी ट्रीटमेंट कम से कम आपको 3-4 मंथ्स लेनी पड़ेगी, निशान ठीक होने से भी ऊपर, जैसे 2 मंथ्स 2 वीक्स ऊपर तक खाने वाली। और इसमें हम रूल ऑफ टू फॉलो करते हैं, जिसमें जब कोई भी क्रीम लगानी है तो वो बाहर से 2 सेंटीमीटर मार्जिन रख के बाहर से स्टार्ट करके अंदर को लगानी होती है। और 2 वीक्स जैसे निशान ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, मतलब कालापन भी चला जाए, उससे भी 2 वीक्स ऊपर तक लगाते रहना है।

0: तो मैडम ये आपको अगर हॉस्पिटल में दिखाए तो मैडम किस जगह दिखाए?
1: आप आर के मिशन में आ सकते हो।
0: ये कहाँ पर है मैडम?
1: ये
2: जी ये वृंदावन में हॉस्पिटल स्थित है, डॉक्टर साहब वहाँ बैठती हैं, सुबह 9 बजे से आपको 2 बजे तक मिल जाएंगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने सर हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: डॉक्टर साहब हमारे पास मैसेज आया है सिंघाना मथुरा से, अमित कुमार हमें लिख के भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब रोज रोज साबुन से नहाने से भी क्या स्किन की समस्या होती है, ये इनका पहला सवाल। और दूसरा, एलर्जी होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ लोग अपने मन से क्रीम लगा लेते हैं, क्या इससे भी नुकसान हो सकता है? इनके दो सवाल है।
1: जी, फर्स्ट क्वेश्चन इनका कि साबुन लगाने से, साबुन कौन सा यूज़ कर रहे हो, मतलब मॉइस्चराइजिंग है या जैसे स्किन को ड्राई करने वाला है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मॉइस्चराइजिंग मतलब वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा, हर जन को हर साबुन सूट नहीं करता, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप। और सेकेंड क्वेश्चन, जो आप क्रीम यूज़ कर लेते हो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो क्रीम्स जैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर लेते हो, ज़्यादातर हम जो लोकल में देखते हैं कि कॉम्बिनेशन वाली क्रीम्स यूज़ करते हैं, 5-5 केमिकल्स उसमें होते हैं, 5 केमिकल्स में से एक तो चलो फ़ायदा करेगा लेकिन बाकी 4 नुकसान करते हैं। मोस्टली स्टीरॉयड होते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड, जिसका बहुत नुकसान होता है। अगर चमड़ी पे लगाओ, आपने देखा होगा स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, वो सब उस जो मेडिसिन्स लगाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। चेहरे पे भी लोग स्टेरॉइड लगाते हैं, जैसे बेटनोवेट लगाते हैं, क्लोब जीएम लगाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उसमें टोटल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस हो जाता है। उसमें जैसे चेहरा बहुत लाल, जैसे धूप में जाते हो तो चेहरा लाल पड़ जाता है, तो उसमें ये होता है कि ये सब ट्यूब्स हमें बंद करनी होगी, बिल्कुल जैसे डस्टबिन में फेंक दो ये। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, लाइक 2-3 ईयर्स तो मिनिमम लोग लगा कर आते हैं। तो जैसे लोग पूछते हैं कितना टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, तो लाइक बेटनोवेट वगैरह वो बहुत लंबा टाइम लगा कर आए होते हैं, तो मिनिमम 6 मंथ्स तो ट्रीटमेंट उस चीज़ का चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी मेडिसिन नहीं लगानी है कहीं भी, चाहे वो फेस हो चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो।
2: जी बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह से ही अपना उपचार कराएं और जीवन में सुरक्षा पाएं, सुख पाएं। एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो, सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हेलो मैम, मैं बोल रही हूँ बिरला मंदिर से।
2: बिरला मंदिर से क्या नाम बताया आपने?
3: माया।
4: माया
3: मेरी मैडम एकदम,
2: हाँ बोलिए बोलिए।
3: मेरी मैडम एकदम साफ तो मोटा हो रही थी, झाई झाई की पड़ रही।
2: अच्छा, चेहरा काला पड़ गया है, झाई झाई हो गई है।
3: हाँ पूरे मोड़े पे, और मैं अपने धूप में भी खड़ी हो जाती है तो जलन होने लग जाती है।
2: जी
3: चूल्हे पर रोटी बनाऊ तो जलन हो जाती है।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो एक में दिक्कत हो, मेरे काले की तो कोई बात नहीं, जलन होने लग जाती है। साबुन से मोड़ दो तो भी जलन हो जाती है।
2: जी इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया आपने?
3: मैं नहीं दिखाया, एक दो बार मैंने तो छोटे मोटे डॉक्टर है यहाँ पे, मैं नहीं।
2: हाँ आपने अपने मन से क्रीम वगैरह लगा ली होगी, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने आपकी समस्या सुन ली है, अब आप समाधान सुनिए।
1: जी नमस्कार। सबसे पहले जैसे आपने ट्यूब्स वगैरह लगाई हुई हैं तो उसकी वजह से, जैसे हम पहले बता रहे थे, टोटल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस, जिसमें कि जैसे धूप में जाते हो तो चेहरा लाल पड़ जाता है। जो लोकल से ऐसी दवाइयां ले लेते हो आप, जैसे उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। स्किन चमड़ी जो होती है, फेस की चमड़ी, ऐसी ट्यूबों के लिए नहीं बनी है, तो उससे चेहरे की स्किन जो होती है वो पतली पड़ जाती है, वेसल्स लाल लाल दिखने लग जाती हैं। तो
3: उस
1: जी, तो इसके लिए एक नॉर्मल सी ट्रीटमेंट नहीं होती है, इसके लिए मतलब अच्छे से आपको ट्रीटमेंट करवानी होगी। जो भी ट्यूबें लगा रहे हो सब बंद कर दो, सनस्क्रीन स्टार्ट करो। सनस्क्रीन का ये होता है कि हमें 2-2 घंटे बाद रिपीट करनी होती है, कम से कम 30+ SPF वाली क्रीम लगानी है, और बाकी एंटी डीपिगमेंटिंग जो डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होती हैं वो स्टार्ट करनी है आपको। तो उसके लिए आपको किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को अच्छे से दिखाना है, तो मतलब आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी अच्छे से, कहीं से भी आप लोकल ट्रीटमेंट मत लेना।
2: माया जी आप समझ पा रही होंगी, आपको डॉक्टर से मिलना ही होगा, एक बार आप अपना स्किन टेस्ट कराएं, डॉक्टर बताएंगे, चेकअप बताएंगे, उसके बाद आपको दवा बताएंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपने हमें फोन किया, आपका

0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मैसेज हमें लिख के भेज रहे हैं राजवीर, ये सौंख मथुरा से हमसे जुड़े हैं। लिख के भेजते हैं कि मेरे हर मौसम में डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल लगाता हूँ तो और ज़्यादा हो जाता है, तो तेल का प्रयोग कब और कैसे करें इसके बारे में बताएं। और साथ ही इन्होंने ये भी लिख के भेजा है कि बाज़ार में मिलने वाली तरह तरह की जो क्रीम है, फेस वॉश, और सोशल मीडिया पे तरह तरह के जो घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, तो वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं, कितने भरोसेमंद हैं?
1: एक तो डेंड्रफ, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम सिबोरिया, मतलब जो सिबोरिया होता है, लेकिन डेंड्रफ को हम बिना देखे ये नहीं कह सकते वो एक नॉर्मल सिबोरिया है। वो एक सोरियासिस, जिसे हम छाजन कहते हैं, सिर में सोरियासिस भी हो सकता है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए कुछ भी ट्रीटमेंट करना सही नहीं है। तो बेटर है कि डॉक्टर को दिखाया जाए। कोई भी एंटी फंगल शैम्पू वगैरह यूज़ कर सकते हो, अगर उससे नहीं फ़ायदा मिलता तो बेटर है कि आप डॉक्टर को ही दिखाओ, कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो एक सिबोरिया है या सोरियासिस, मतलब
0: जी
1: छाजन की तरफ जा रहा है।
0: जी जी एक और श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो, तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, अभी आपने सोराइसिस की बात की, सोराइसिस और हर्पीज के बारे में श्रोता साथियों को थोड़ी जानकारी दे दें और इससे कैसे बचा जा सकता है, लक्षण क्या हैं इसके?
1: एक सोरियासिस, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। सोरियासिस में स्किन का टर्नओवर जो होता है वो जैसे नॉर्मली इट इज़ 28 to 30 days,
0: जी
1: और सोरियासिस में ये कम होकर 6 to 7 days हो जाता है। तो उसके कारण जो स्किन का जैसे एरिडमा, जैसे लाल कलर के प्लाक्स हो जाते हैं, उसके ऊपर स्केल्स आते हैं, सिर पे भी ये दिक्कत आ जाती है। सिर पे जैसे एक एरिथमेटस प्लाक्स, उसके ऊपर प्लाक्स तो हमें दिखते नहीं है सच, उसमें स्केल्स बहुत हो जाते हैं, एक क्राउन बन जाता है जिसमें रेड कलर के, जैसे रेड कलर के प्लाक्स बन जाते हैं, ऊपर ऊपर से वो स्केल्स आ जाते हैं। और जो हर्पीज है, हर्पीज जोस्टर, इसमें एक वायरस होता है जो चिकन पॉक्स वाला ही होता है, वो हमारी नसों में रहता है। तो जैसे पहले किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, और आगे जाके जैसे ओल्ड एज, कुछ स्ट्रेस, कुछ इन्फेक्शन, ये सब के कारण चिकन पॉक्स वाला वायरस वो रीएक्टिवेट होकर हर्पीज की तरह प्रेजेंट करता है। हर्पीज में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें मेडिसिन कम विद इन 72 आवर्स स्टार्ट करनी होती है, नहीं तो वो बाद में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेलजी है, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा जलन वगैरह रहती है, 1 महीने में प्रेजेंट करता है। सो बेटर है कि पेशेंट विद इन 72 आवर्स जो एंटी हर्पेटिक मेडिसिन होती है वो स्टार्ट करे। बहुत पेशेंट्स बाद में आते हैं, तो बाद में जैसे लोकल से ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो बाद में 1 महीने 2 महीने बाद उन्हें बहुत जलन रहती है, जो स्कार्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पाती। सो अगर किसी को भी हर्पीस का लक्षण लगे, जिसमें कि एक डर्मेटोम होता है, उसमें पानी के छाले या फिर कोई इरोजन्स, मतलब जख्म बने एक ही जैसे बाजू पे और छाती पे आ जाएं, तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो हर्पीज है तो विद इन 72 आवर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो ये हर्पीज वाली मेडिसिन होती है उसमें पानी ज़्यादा पीना होता है, और फ्लूइड्स वगैरह अच्छे से लेने होते हैं, जूस वगैरह ले सकते हो, पैक जूस नहीं लेने हैं, फ्रेश जूस ही लेना है।
0: जी डॉक्टर साहब, लोगों में तमाम तरह की बातें हैं हर्पीस को लेके, खासकर जैसे ये समस्या शुरू होती है तो लोग कहते हैं कि मकड़ी फिर गई, ये एक आम भाषा आपने भी सुनी होगी
1: जी
0: लोगों के
1: जी
0: द्वारा, और फिर वो झाड़ा लगवाने के लिए जाते हैं।
1: जी
0: तो इसके बारे में अभी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक श्रोता साथी
1: जी
0: हमसे जुड़ रहे हैं।
2: स्वागत है आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं नासिर खान बोल रहा हूँ, गांव मलियारा से।
2: जी
0: जी ये कहाँ पड़ता है, मथुरा में?
3: हाँ जी, ये डीग जिले में पड़ रहा है।
0: जी जी जी अपना अपनी समस्या बताएं डॉक्टर साहब से।
3: घर समस्या ये है, मेरा काला रंग होता जा रहा है चेहरे का।
0: जी आपकी अवस्था कितनी है?
3: मेरी अवस्था 35 वर्ष है।
0: जी, और धूप में काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं?
3: खेती बाड़ी का काम करता हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब से।
1: जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: आपका जो रंग है, एक तो

0: नेचुरल चीज है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो धूप में काम करते हो तो सनस्क्रीन, जैसे धूप वाला काम है तो आपको कम से कम 50 SPF वाली सनस्क्रीन स्टार्ट करनी चाहिए। और जैसे कि पहले बताया कि सनस्क्रीन दो दो घंटे बाद रिपीट करनी है, तो जो भी एरियाज एक्सपोज्ड है सब पे आप सनस्क्रीन अच्छे से लगाओ, फिर ही धूप में जाओ। धूप में जाने से 10-15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, उसका असर आने में टाइम लगता है। और
1: मेरे
0: जैसे
1: पास है सर।
0: जी
1: हेलो,
0: जी जी
1: मैं मथुरा आकाशवाणी को सुनता रहता हूँ, रेगुलर सुनता हूँ।
2: जी, ये
1: जी
2: तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सुनते हैं। जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नासिर जी। डॉक्टर साहब, हम हर्पीस के बारे में जो भ्रांतियाँ
0: जी
2: फैली हुई हैं या ये सही बात है, कृपया आप जानकारी दें।
0: ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे हर्पीस की ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बताया, 72 आवर्स में स्टार्ट करनी होती है, नहीं तो वो बाद में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेलजिया के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: जी
0: तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, नहीं तो बाद में आपको उसका जैसे
2: खामियाजा
0: जी जी
2: भुगतना पड़ेगा।
0: जी
2: जी डॉक्टर साहब, बालों को लेकर के बहुत परेशान हैं आजकल खासकर युवा पीढ़ी,
0: जी
2: कि लड़की हो या लड़का, अचानक से जो बालों का झड़ना है उसको लेके परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
0: बालों की जैसे सबसे पहले हमने डाइट पे ही फोकस किया है, तो डाइट स्किन लगा लो, हेयर, नेल्स, ये सब प्रोटीन ही है।
2: जी
0: तो सबसे पहले डाइट में हाई प्रोटीन लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन में हमारे जैसे चने, दाल, सोयाबीन, वेज डाइट में यही है।
2: जी
0: नॉन वेज में तो प्रोटीन काफ़ी होता है, तो सबसे पहले हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। उसके अलावा कुछ बायोटिन की टेबलेट्स वगैरह होती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो।
2: जी
0: बायोटिन और कुछ सीरम्स वगैरह होते हैं।
2: जी मतलब ऐसी कोई समस्या लगे तो स्किन स्पेशलिस्ट
0: जी
2: से मिल लें तो
0: जी
2: अपने आप समाधान
0: बाकी
2: हो जाएगा।
0: आजकल दूसरा भी AGA जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, वो भी अब जेनेटिक मतलब फादर से, जैसे फादर के बाल अच्छे होते हैं लेकिन सन के वो भी है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण AGA हो जाता है। तो वो भी कुछ भी बालों की समस्या है तो किसी भी स्किन डॉक्टर को दिखा के आप समाधान पा सकते हैं।
2: क्या डॉक्टर साहब ये तनाव से भी संबंधित है?
0: जी स्ट्रेस से भी संबंधित है, स्ट्रेस इन्फेक्शन से भी हो जाता है। विद इन 3 मंथ्स जैसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, उससे भी हो जाता है
2: जी, बाल
0: स्ट्रेस
2: झड़ते
0: भी।
2: भी हैं और सफेद भी होते हैं
0: जी
2: इसमें।
0: सफ़ेद भी होते हैं, आजकल बच्चों के भी सफ़ेद होने लग गए हैं।
2: जी,
0: तो
2: ध्यान रखना होगा खान
0: जी
2: पान का और सही
0: खान
2: समय
0: पान
2: पे
0: का
2: सही
0: हाई
2: इलाज का।
0: प्रोटीन डाइट लेनी है सबसे पहले।
2: जी डॉक्टर साहब, वंदना जनकपुरी मथुरा से हमसे जुड़ी हैं मैसेज के थ्रू, प्रश्न पूछ रही हैं, अगर छोटे बच्चे के चेहरे, गर्दन और हाथ पर छोटे छोटे दाने निकल आएँ तो कौन सा पाउडर लगा सकते हैं या पाउडर नहीं लगाएं? तो पाउडर का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मेडिकेटेड पाउडर के बारे में थोड़ा आप जानकारी दे देंगे किस तरह से?
0: दाने को हम एज सच बता नहीं सकते हैं कि क्या है, वो आपको डॉक्टर को दिखा के ही पता लगेगा क्या चीज़ है। तो एज सच किसी भी जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट को बताना सही नहीं है। जो मेडिकेटेड पाउडर्स हैं फेस पे, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ही, जैसे मलेरिया है तो लगा सकते हो। कुछ पाउडर होते हैं क्लोट्रिमाजोल वाले होते हैं, एज सच कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लगवानी है।
2: जी, डॉक्टर से मिल लें, डॉक्टर जो बताएं उसके अनुसार आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
3: हेलो सहेली, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मेरा नाम नारायण है डॉक्टर साहब।
0: जी,
3: तो आप अपना
1: ठीक
3: प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
1: है, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि मेरी एक नातनी है
0: जी
1: और उसकी एज है करीब करीब 12 साल।
0: जी
1: उसके चेहरे पे, सीना पे, हाथ पे सफेद दाग पड़ गए हैं
0: जी
1: और एक साल से पलवल में इलाज करा रहा हूँ उसका। यहाँ से जाता हूँ और पलवल इलाज करा रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं कर रहा है।
0: जी सफ़ेद दाग के लिए हम इसे विटलाइगो कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि रोकना है निशानों को, जैसे निशान बढ़ते हैं तो सबसे
1: हाँ
0: पहले
1: जी,
0: उसे रोकना होता है। तो उसके
1: हाँ
0: लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कलर आना वो सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले कलर कम होंगे, मतलब निशान निकलने कम होंगे, वही हमारी फर्स्ट

0: अप्रोच होती है।
1: जी,
2: आप डॉक्टर साहब से एक बार मिल लीजिए वृंदावन स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में, उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो आपको बता देंगी।
1: पलवल दिखा रहे हैं साहब, उसके ले जाने से पलवल।
2: हाँ, आप पलवल दिखा रहे हैं, अगर वहाँ से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार डॉक्टर साहब से मिल लीजिए।
1: कहाँ पे? वृंदावन?
2: जी, वृंदावन में आरके मिशन हॉस्पिटल में आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ये प्रकाश जैन हैं, नांदेड़ से, महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं, अपनी उम्र बता रहे हैं 55 वर्ष। प्रश्न है इनका कि एसी से बाहर आने के बाद मेरे हाथ पैर में सूजन आ जाती है, क्या करें, सुझाव दें।
0: एसएच सूजन आपके किस कारण से आ रही है, उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह कराने होंगे। सूजन हाथ पैर में, सूजन लाइक आपकी एज भी है तो कार्डियक चेकअप करवाना चाहिए या थायराइड चेकअप करवाना चाहिए। बाकी जॉइंट्स में दर्द रहता है तो ऑर्थोपेडिशियन को मिल सकते हो आप। एसएच स्किन के लिए इसका कुछ नहीं है, बेटर अपना चेकअप अच्छे से करवा लो।
2: जी डॉक्टर साहब, आँखों के नीचे काले घेरे, अक्सर जो युवा पीढ़ी है वो इस बात से परेशान रहती है, तो ये किस कारण से?
0: सबसे कॉमन स्ट्रेस, रात को जैसे स्क्रीन वर्क, वैसे भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, यूजुअली जॉब करके भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना है ये। बाकी डाइट, मेन रोल डाइट का है, अगर अच्छे से डाइट नहीं लोगे तो ये बच्चों के भी आजकल स्टार्ट हो गया है, स्क्रीन टाइम करके भी, डाइट करके भी। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एचबी वगैरह टेस्ट करवाना चाहिए, थायराइड चेक करवाना चाहिए, वो सब आपको एक डॉक्टर को मिलके ही आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। तो जैसे डीपिगमेंटरी क्रीम्स वगैरह लगा सकते हो, लेकिन उससे जब तक आपकी अंदर बॉडी, लाइक स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्किन, जो अंदर आपके चल रहा है उसकी ही रिफ्लेक्शन है, तो सबसे पहले टेस्ट करवाओ। बाहर का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो सिस्टम में अपनी बॉडी में चल रहा है उसे सबसे पहले ठीक करवाना चाहिए।
2: जी, चलते चलते एक श्रोता साथी से और बात कर लेते हैं, समय हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन इनकी बात सुन लेते हैं।
3: स्वागत है आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं फोन मथुरा से बोल रहा हूँ।
3: जी, अपना प्रश्न पूछिए।
1: मेरे एक दो ये सफेद दाग हो गए, इसका ट्रीटमेंट बताएंगे?
3: जी
0: जी, सफेद दाग।
1: हाँ, एक दो जगह।
0: कहाँ पर हुए हैं?
1: एक तो मेरे
0: देख जी, सफेद दाग एज सच हम बिना देखे कह नहीं सकते कि वो सफेद दाग है। सफेद दाग कई कारणों की वजह से हो सकते हैं। विटलाइगो है, सफेद दाग जो है कि नहीं है वो बिना दिखाए पता नहीं लग सकता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होती हैं जिसकी वजह से लाइक सफेद जो कलर होता है वो चला जाता है। तो बिना चेक करवाए एज सच ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, बेटर आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए।
1: बार बार वो छींक आती है, बार बार छींक आती है।
0: छींक जी, छींक डस्ट एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, वैसे और भी कारण हो सकते हैं छींक के, ना डस्ट वजह, डस्ट वगैरह से एक्सपोज, या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं जैसे मौसम बदलना।
1: जी, मौसम नहीं होते ही नहीं, बार बार छींक आती।
0: जी,
1: बार बार होती है वो।
2: जी भैया, ये एलर्जी हो सकती है, अब वो एलर्जी किस कारण से है ये तो डॉक्टर एलर्जी टेस्ट करके ही बताएंगे। आप एक बार डॉक्टर साहब से मिल लीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के पास जाए किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, प्यासा कुएं के पास जाता है। भैया, आपने हमें फ़ोन किया, आपका जी, आप एक बार ओपिनियन लीजिए डॉक्टर साहब से मिल के उनकी, ठीक है, समस्या दिखा के। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कील मुहासे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, दांत खाज, खुजली, हर्पीस, तमाम तरह की जो त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, हमारे श्रोता साथी आपसे जुड़े और आपसे समाधान पाया उन्होंने। चलते चलते कुछ दिशा निर्देश हमारे श्रोता साथियों के लिए, हमारे लिए, कि ये जो कारण है ये पैदा हो जाते हैं, हम ऐसी कौन सी सावधानी बरतें कि ये समस्या हो ही ना।
0: जी, एक तो सबसे पहले डाइट का रोल है, फिर उसके बाद कुछ भी बिना किसी के डॉक्टर, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से कुछ भी कहीं भी मत लगाओ, इसी से बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। क्योंकि बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कुछ भी लगा कर आते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन वाली क्रीम्स लगा के आते हैं, उसी को ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।

0: एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में।
1: जी, तो मतलब खान पान का ध्यान रखें, पहन पहनाव से भी इसका तात्पर्य,
0: जी
1: डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में जो पहन पहनाव है वो भी
0: जी
1: सही होना चाहिए।
0: जी एक तो कपड़ों को सुखाकर अच्छे से पहने। कुछ लोग होते हैं जो कपड़े सुखा अच्छे से सुखाते नहीं हैं, धूप में सुखाओ ताकि जो इन्फेक्शन हैं वो पहले ही कम हो, फिर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले ले

0: फिर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेने ही जाना ना पड़े।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से हमारे श्रोता साथियों को समझाया त्वचा के बारे में, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ त्वचा केवल सुंदरता नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है। समय पर पहचान, सही उपचार और विशेषज्ञ की सलाह, यही स्वस्थ जीवन का आधार है, क्योंकि सच्चा सुख निरोगी काया। साथियों, हमसे जुड़ी थी डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ, और आपने इनसे जानकारी प्राप्त की। अपने कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के। तब तक के लिए अनुमति दीजिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। मेरी साथी दीप्ति,
2: नमस्कार श्रोताओं,
1: और मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनतालोक FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे यशुदास को। फिल्म थी एक नई पहेली, आनंद बख्शी की शब्द रचना, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है आपकी कसम। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, राहुल देव वर्मन की संगीत रचना।

फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। सफर को तय किया आपने अपनी रेडियो मित्र उषा फांडे के साथ FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। आपसे कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Orishas, Upper Himalayan, West Bengal and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. Meanwhile, heat wave conditions are likely to prevail in isolated pockets over coastal Andhra Pradesh, while Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal will experience hot and humid weather conditions till tomorrow. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex added 20 points to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और

0: न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को

0: दृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now, Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
1: प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति

0: दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है। यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है। कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान

0: और सुनामी वगैरह, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: हाँ, सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा, काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
6: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
6: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से

0: जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
2: सारी फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
2: सारा सामान
1: उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला दी।

देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं

0: सर कहते हैं
1: मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
5: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो।

0: पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: राम,
0: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
0: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
0: ठीक है,
2: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
0: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: हाँ, चलो ठीक है।
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
0: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
0: हाँ, ठीक है,
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
0: बचाएंगी,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
5: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
0: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को, हथियार
6: लो।
2: ये कुछ नहीं कर सकते चाची, आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
6: देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
2: हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
6: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़ कर पेड़ों से अलग कर दो। हाथ से बोला, ये देवा।

0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहां से,
2: बाद में भागने काटने।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
4: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या
5: बात है भाई, गौरा
4: जीतती रहे, मिट्टी जीतती
6: रहे, तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
7: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को
7: कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना
8: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर आपसे पुनः हमारी दूसरी सभा में भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ में होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम युवाणी सदा से ही युवाओं के लिए मार्गदर्शक का एक भूमिका निभाता है। उस क्रम में आप सुनते हैं समय समय पर ऐसी वार्ताएं या ऐसे हमारे चर्चाएं, चर्चा का विषय जिसमें कहीं ना कहीं कार्यक्रम की सार्थकता होती है कि हम आज के समय में जो चुनौतियां हमारे युवाओं के सामने हैं, हमारे युवा साथी जिन चीज़ों को लेकर विचार करते हैं अपने करियर के लिए, जितने वो संजीदा हैं, और क्या क्या उनकी रूपरेखा है, क्या उनकी प्लानिंग है अपने आने वाले भविष्य को लेकर, उस क्रम में हम उन्हें कुछ ना कुछ तथ्यपरक जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, उन तक अवश्य पहुंचाएं। ये कोशिश होती है हमारे युवाणी के इस कार्यक्रम की। और आज हम बात करें आपसे कि युवाओं में तकनीकी एवं डिजिटल कौशल जो है, किस तरह से युवा अपना जो अपने को टेक्निकली इम्प्रूव कैसे करें, यानी कि जो ये प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का जो ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है, पूरा का पूरा जो एक क्षेत्र है, उसमें किस तरह से उनके लिए रोज़गार की जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या हैं, और किस तरह से वो खुद का एक कौशल विकास कर सकते हैं, या हम कहें कि बदलती तकनीकी के साथ युवा खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये बात आज के संदर्भ में जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य हो जाती है। कारण ये कि एक समय था पहले जब आप सूचनाओं से जो हमारे संसाधन थे वो उतने सक्रिय नहीं थे। हम अक्सर कह सकते हो कि आप एक तरीके से हम चीज़ें सुन पाते थे और जानकारी ले पाते थे, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ हमारी पूछनी होती थी तो वो साधन बड़े सीमित थे कि हम अगर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना हो या कुछ पूछना हो तो हमारे पास में या तो हमें किसी विशेषज्ञ का सहारा लेना होता था या हमारे पास में होती थी किताबें या कोई सही मार्गदर्शक। यही हमारे पास में ऐसे संसाधन थे जिनके माध्यम से हम उस क्षेत्र की जानकारियां जुटा पाते थे। और कहीं ना कहीं जो लोग जागरूकता के अभाव में, ऐसा कई बार होता था कि शिक्षा भी है, सारी चीज़ें भी हैं, फिर भी उस पद तक या उस स्थिति तक व्यक्ति अपने को नहीं पहुंचा पाया। कारण ये होता था कि कहीं ना कहीं जो सूचना का जो तंत्र था वो उसका लाभ नहीं ले पाते थे लोग। तो ये, लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें जहाँ हर एक हाथ में मोबाइल है, या कह सकते हैं कि लोग, हमारे युवा जो हैं वो इंटरनेट के संपर्क में हैं, और इस बदलती दुनिया में जहाँ आप देखते हैं कि डिजिटल हो रहा है, आज छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ से लेकर और एक साधारण सी दुकान पर जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक QR कोड है, या कह सकते हैं कि आप जो लेन देन अपना ट्रांजेक्शन है सारा का सारा डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन अपना कर सकते हैं, और उसमें भी क्या क्या सावधानी आपको रखनी है ताकि आप किसी फ्रॉड के या किसी धोखे के आप शिकार ना हो जाएं, तो वो भी समय समय पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सुनते

होंगे, हमारी वार्ताओं के माध्यम से हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि भाई कभी अपनी जो जो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। वो जानकारियाँ आपकी गोपनीय जानकारियाँ हैं, ताकि जो ऑनलाइन का आपका जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो सुरक्षित बना रहे, उसमें किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना हो जिससे जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको नुकसान का सामना करना पड़े। तो युवाओं में तकनीकी एवं डिजिटल कौशल, जी हाँ, ये है आज चर्चा का विषय। और युवाओं में आज आप देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा जो है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे युवा टेक्निकली उसको ले रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे हैं जो वाणिज्य के क्षेत्र में जा रहे हैं, या कुछ कला वर्ग या ह्यूमैनिटीज़ के उसमें हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो विज्ञान वर्ग या टेक्नोलॉजी जुड़ रहे हैं। और उसमें जो हमारे विषय हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे युवाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है कि वो बदलते समय के साथ अपने को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सके, जिससे कि जो मार्केट में जो जॉब्स हैं वो उनको मिल सके। तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सरकारी सेवाओं में आम जनता तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना, ये कई सारे बिंदु रहे। और अगर हम बात करें तो पेपरलेस सेवाएं या कैशलेस जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप मोबाइल के माध्यम से ही आप पेमेंट कर देते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो कह सकते हैं कि भारत में सुगम जीवन है ना, कई बार आपको आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आपके पास मोबाइल है तो आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं, या कुछ भी किसी तरह का लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट मंगा सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के 9 जो पिलर्स हैं, जिनको हम मजबूती से जिस पर ये डिजिटल का जो पूरा का पूरा जो डिजिटलीकरण है या डिजिटलाइजेशन है वो पूरा का पूरा जो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो वो है ब्रॉडबैंड हाईवे। जी हाँ, हर गांव तक इंटरनेट की सुविधा हो, मोबाइल तक यूनिवर्सली यानी कि सार्वभौमिक रूप से सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हो, लोग गांव में हो, देहात में हो, लेकिन वहाँ इंटरनेट की सुविधा हो। और जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें इंटरनेट के ऐसे कार्यक्रम करे जाएँ जहाँ पर उनको ईजी और पहुँचाया जा सके आसानी के साथ। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से मैं शासन में भी सुधार है, ई गवर्नेंस। जी हाँ, जो हमारा शासन प्रशासन है वो भी अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसमें कोई खामी है या उसमें और क्या क्या सुधार लाई जा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक ई गवर्नेंस के रूप में एक आप उस पर एक पूरा ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। साथ ही साथ ई क्रांति, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का जो वितरण है उसमें एक निश्चित रूप से एक बहुत समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से उसमें विकास हुआ है, एक क्रांति आई है पूरी की पूरी, ये भी एक उसमें इसको आप पिलर के रूप में है। साथ ही सभी के लिए एक सूचना उपलब्ध है, अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना चाहिए तो वो उसको मिल सकती है, उसको सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से कुछ हल्की सी जानकारी के क्रम से उसको आप बढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। और नौकरियों में भी आप देखते हैं जो रोज़गार है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आईटी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी रोज़गार परक है। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स हैं जो आप इनमें देखें, तो ये कुल मिलाकर के ऐसे 9 बिंदु हैं, ब्रॉडबैंड, मोबाइल का सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना यानी कि माय गवर्नमेंट जैसे प्लेटफॉर्म, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है नौकरियों के लिए में जो आप आईटी का, ये सब अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इस तरह के कई बिंदु हैं जो इनसे आज ये जो डिजिटल की जो संभावना है जो है ना वो उसको मैं काफ़ी मदद मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे उसको तंत्र को मजबूत करती हैं। कहने का आशय ये है कि अब युवाओं के साथ जब आप किसी मोबाइल के या एंड्रॉयड मोबाइल के या किसी तरह से अब आप मोबाइल के टच में आते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें मैसेजेस भी आप बैंक से जुड़े हुए हैं, या आप एजुकेशन के लिए भी आप इंटरनेट पर जाते हैं तो उसमें कई सारे
कहाँ कहाँ नौकरियाँ हैं, किस किस तरह से आप कोर्स लें। आज बच्चे जो हैं चैट जीपीटी के माध्यम

से या एआई के माध्यम से उनके जो प्रश्न हैं उनको उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारी जो जागरूकता हो, हमारा जो समय का प्रबंधन हो, हमारे जो शिक्षा हमने ली है उसको हमारा जो ये टेक्नोलॉजी से जुड़ना है वो निश्चित रूप से हमें लाभ पहुंचाता है। समय की हमारा जो है समय बचाता है, हमारे पैसे की हमको बचत होती है और हमारी ऊर्जा की बचत होती है, और कम समय में ऊर्जा बचाते हुए हम सारी जानकारी जुटा पाते हैं। तो ये वो ताकत है, लेकिन इस ताकत का हम सदुपयोग कैसे करें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बदलती तकनीक के साथ युवा खुद को कैसे तैयार करें, जी हाँ, फिर से सारी वही बातें हैं कि हम अपने को प्लान करें। आप लिख लें कि हमें कोई चीज़ कितने समय में हमें अब लिखनी है, अपने गोल, अपने सारे टारगेट्स आप लिख लें और उसके हिसाब से पूरा टाइम का फ्रेम करते हुए, अपनी प्लानिंग बनाते हुए हम उस तक जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो हमारे टारगेट हैं, छोटे छोटे हमारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो रास्ता है, जो आपने अपने लिए एक टारगेट बनाया है, जिस मंजिल पर आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएंगे। तो साथियों, ये थी बात, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: जी हाँ, और ये ख्वाब तभी पूरा होता है किसी का भी जब अनुशासन हो जीवन में और व्यवस्थित आप जीवन शैली जीते हों और सभी चीज़ें उस व्यवस्थित जीवन में समय पर आप पूरा करने का जब लक्ष्य बनाते हैं तो आप पाते हैं कि धीरे धीरे जो आपने प्लानिंग करी है वो सफलता की ओर जा रही है। और आज एक और स्वरचित कहानी आप सुनिए, शिक्षा का महत्व। आज की कहानीकार हैं अनु सारस्वत।
1: आंगन में बैठकर मीरा बर्तनों को धड़ाधड़ साफ किए जा रही थी। बर्तनों की उथल-पुथल की आवाज सुनकर माँ आंगन में आईं। क्या बात है बेटा? माँ ने मीरा से पूछा। मीरा ने जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ करके माँ के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली, माँ बापूजी से मेरी आगे की पढ़ाई की बात करो ना। देखो माँ, इस बार मेरा 12वीं कंप्लीट हो गया और मेरी फर्स्ट डिवीजन भी तो आई है। अब मुझे और आगे पढ़ना है माँ, मुझे ग्रेजुएशन करना है। आप बापूजी से बात करो, वो मान जाएंगे। माँ ने मीरा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा हमारे गांव में बेटियां सिर्फ 12 तक ही पढ़ती हैं और फिर तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसा जोड़ना है। माँ के हाथ को अपने हाथों में थमाते हुए मीरा कहती है, क्या माँ, आप भी पता नहीं किस जमाने में जी रही हो। ये देखो माँ, आज का अखबार, इसमें लिखा है लड़कियां भी उड़ाने लगी जहाज। देखो माँ, देश कितना आगे बढ़ रहा है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं और फिर हम लोग क्यों पीछे रहे माँ? हमें भी समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। और जहाँ तक शादी की बात है तो मुझे अभी अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। शादी की बात तो बाद की है माँ, माँ मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं। ठीक है बेटा, तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी तेरे बापूजी से। इतना कहकर माँ घर के कामों में जुट गईं। माँ के कहे शब्द मीरा के दिल को सुकून का अनुभव करा रहे थे। मीरा एक गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की थी, लेकिन साधारण होकर भी वह असाधारण थी, क्योंकि वह अपने गांव की सभी लड़कियों से बहुत अलग थी। न जाने मीरा ने इस गांव के लिए कितने सपने संजोए रखे थे। मीरा चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर गाँव में एक विद्यालय खोले और गाँव के लोगों को शिक्षा का महत्व तो समझाए। गाँव का प्रत्येक बच्चा बच्चा शिक्षित हो, प्रत्येक नारी शिक्षित हो, इसके लिए भावी योजनाएं बना चुकी थी मीरा। लेकिन मीरा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसके गाँव में लड़का पढ़ाई के लिए बाहर जाए तो जाया जाए, लेकिन बेटियों के प्रति गाँव के लोगों की कुछ अलग ही मानसिकता है कि बेटी को बस 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद उसकी शादी कर दो। इन सभी मानसिकताओं की दीवार को तोड़कर मीरा शिक्षा पाना चाहती थी। मीरा को अपने शिक्षक की कही हुई बात आज भी याद थी। शिक्षा वह है जिसके द्वारा मनुष्य कठिनाइयों को दूर भगाने योग्य बन सके, जो बुद्धि के विकास में सहायता दे, जिसमें संकट दूर करने के उपाय ढूंढ निकालने का बल हो, जिससे स्वावलंबन की शक्ति मिलती हो। मीरा आंगन में चारपाई पर बैठकर बापूजी के आने का इंतजार कर रही थी। सूरज अब ढलने लगा था, रात होने को थी। मीरा का इंतजार बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते घर के बाहर चबूतरे पर गांव के सभी बच्चे चहलकदमी

करने लगे थे। एकाएक बापूजी माँ को आवाज देते हुए घर के अंदर आए, रज्जो ये सब्जी का थैला ले जा। माँ के आने से पहले ही मैंने बापूजी को प्रणाम किया और बापूजी के हाथ से सब्जी का थैला लेकर मैं रसोई की ओर चली गई। माँ बापूजी के लिए गिलास में पानी ले जाने लगी। मैंने माँ को रोककर धीमे से कहा, माँ बापूजी से मेरी पढ़ाई की बात करो। माँ ने मेरी ओर देखकर गर्दन को हिलाते हुए हामी भरी और पानी का गिलास लेकर आंगन में बैठे बापूजी की ओर बढ़ गईं। मैं रसोई के जंगले में से आंगन की ओर झांकने लगी। माँ ने बापूजी की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, सुनते हो जी, वो मैं कह रही थी कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी

0: हमारे देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ये खबर उड़ी थी कि लड़कियां जहाज और ट्रेन चला रही हैं। तो मैं कह रही थी कि माँ थोड़ा सकचाते हुए रुक गई। फिर बापूजी ने ग्लास में से थोड़ा पानी का घूंट पीते हुए माँ से कहा, क्या बोलना चाहती हो रज्जो, साफ साफ कहो। माँ अपनी बात को पूरा करते हुए फिर से कहती हैं, मीरा और आगे पढ़ना चाहती है, वो ग्रेजुएशन करना चाहती है, आप उसे ग्रेजुएशन करने दिल्ली भेज दो। बापूजी गुस्से से आग बबूला होकर पानी का गिलास आंगन में फेंक देते हैं और माँ की ओर गुस्से से देखकर कहते हैं, रज्जो एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई नहीं जा रहा दिल्ली ग्रेजुएशन करने, हमारे गांव की लड़कियां सिर्फ 12वीं तक पढ़ती हैं। तुमने सिर पर चढ़ा के रखा है मीरा को, उसे अच्छे से समझा दो, ये उसकी पढ़ाई की उम्र नहीं है। मैंने एक अच्छा रिश्ता देख लिया है मीरा के लिए, अब उसकी शादी भी तो करनी है। जाओ जाकर अपना काम करो और खाना बना कर लाओ। माँ चुपचाप नीचे नजरें झुकाकर आंगन में पड़े गिलास को उठाकर रसोई में आ गई। माँ ने मेरी ओर देखकर नजरें फेर ली। मैं बापूजी की बात सुनकर निराश हो गई और अपने कमरे में जाकर किवाड़ से कुंदी लगाकर रोने लगी। तभी मीरा को अपने शिक्षक की कही बात याद आई, जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल अकेला। शिक्षक की कही बात उससे मीरा के अंदर साहस और कर्मण्यता का बीज उग चुका था। मीरा ने अपने पुरुषार्थ के दम पर स्कॉलरशिप पा ली थी। स्कॉलरशिप पाने के बाद मीरा के मन से निराशा के बादल छट चुके थे और एक आशा को मन में लिए मीरा घर वालों को बिना बताए दिल्ली ग्रेजुएशन करने निकल गई थी। कुछ सालों बाद मीरा के ग्रेजुएशन पूर्ण होने के पश्चात मीरा आईएएस ऑफिसर बन गई। फिर क्या था, मीरा का फोटो अखबार में देखकर मीरा के बापूजी खुशी से झूम उठे और रसोई में काम कर रही माँ को आवाज दी, देख रज्जो अपनी मीरा का फोटो अखबार में छपा है। माँ और बापूजी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी थी। माँ कहने लगी, मैं तो पहले से ही भाप गई थी अपनी बेटी के इरादों को। मीरा के गांव वापस लौटने पर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मीरा के बापूजी मीरा को सीने से लगाकर शाबाशी दे रहे थे। गांव के लोग कह रहे थे, बेटी हो तो मीरा जैसी। मीरा इस मान्यता को पूरी तरह तोड़ चुकी थी कि लड़कियों को 12वीं तक पढ़ाकर उसकी शादी कर दो। मीरा ने अपने गांव में विद्यालय खोलने का जो सपना संजोया था वह उसने कर दिखाया। सारी बाधाओं को कुचलकर उसने अपनी योग्यता का परचम लहराया एवं गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के महत्व की घर घर अलग जगाई और आज मीरा के गांव की प्रत्येक नारी शिक्षित है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं एक सीख देना चाहती हूँ कि यदि आप पुरुष को पढ़ाते हो तो केवल पुरुष शिक्षित होता है, यदि आप नारी को पढ़ाते हो तो केवल एक नारी ही नहीं बल्कि परिवार शिक्षित होता है, और यदि पूरा परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज और राष्ट्र शिक्षित होता है।
1: जी हाँ, अभी आपने सुनी कहानी शिक्षा का महत्व। कहानी लेकर आई आपके बीच में अंजू सारस्वत। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

आज समय की यही पुकार, शिक्षा नारी का अधिकार। सबसे बढ़कर शिक्षा दीक्षा नारी की है यही परीक्षा। धरती पर स्वर्ग वहाँ, शिक्षित नारी है जहाँ। पढ़ी लिखी जो सबला है, वरना तू तो बस अबला है। शिक्षा अनमोल गहना है, शिक्षा नारी ने जो पहना है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो यतन। समय समय की यही पुकार, शिक्षा नारी का अधिकार। बहुत प्यारी सी ये पंक्तियाँ, और इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one-off test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण.

अब से कुछ ही देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान का महत्व, साथ ही दूध देने वाले पशुओं का पोषण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय। इस विषय पर रहेगी चर्चा। साथ ही आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार। इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आपसे बातचीत करेंगी मृणालिनी दीक्षित।

कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण में आप सुनेंगे मखदूम फरे पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। साथ ही आज के कार्यक्रम में आनंद लेंगे आप ब्रज लोकगीतों का। भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। इसके अंतर्गत डॉक्टर नरपति देव भारद्वाज से आज सुनेंगे आप ब्रज वार्ता, ब्रज की मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े। संध्या 7:31 पर कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम सुहानी। रात्रि 8:00 एक बार फिर से लेंगे आप आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुना जा सकेगा और फिल्म संगीत का एक आनंद लेंगे आप एक बार फिर से। रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे ढोला, प्रसंग रहेगा आज का कंपलागढ़ की लड़ाई। आज कलाकार होंगे प्रभुदयाल और साथी। समय रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री रसिक बल्लभ से पखावज वादन, जो चौताल बारह मात्रा पर निबद्ध रहेगा और हारमोनियम पर संगत करेंगे परवेज। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अभी आप सुन रहे थे संदेश स्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी ममता रानी।

0: चर्चा, आप थोड़ा सा और काम की बात तो पहले सुन लियो। देखो भैया, जो हमारे हम बकरी है, जैसे गरीब की गाय है, भैंस है, ये सब दूध देवे वाले पशु हैं। और इन दिनों पड़े भाटो, तेज गर्मी पड़ रही है, तो जो दूध उत्पादन है वो कम है जाए, यानी कि पशुअन को गर्मी लगे है, तो हमारे जो पशुपालक भैया हैं, किसान भैया हैं, अपने पशुओं को गर्मी से बचाव रखें, कि जा जगह पे पशुशाला है वह जगह पहले तो साफ सफाई रखें, नहलाएं दिन में उनको, और 3 या 2 3 4 बार जैसा हो पानी जरूर पिलाएं, साफ सुथरो पानी पिलाएं। और फिर उनके जंगला है, टटिया है, वहाँ गीले करके बोरा लटकाए दें, पंखा चलाए दें, और भैया और सुविधा हो तो और कछु कर सकते हैं, कूलर उ चला सकते हैं कि ना, ब्यार आमत रहेगी सीरी सीरी। और अपने पशुअन को खान पान में ये है कि उन्हें हरो चारो दोनों टाइम खिलाएं, तासे का है उनको जो है ठंडक रहेगी पेट में, और उनको पेट भी भर जाएगा, और पशु को पौष्टिकता हरे चारे से मिले हैं, जैसे वाकई जो दूध उत्पादन है वहाँ में बढ़ोतरी हो गए हैं। दाना मिश्रण है भैया, आराम से आप अपने पशुओं को खिलाएं, मिनरल मिश्रण है, अपने पशुओं को प्रतिदिन खिलाएं, वहाँ में कछु ज़्यादा लागत ना आवे है, और जो हमारे पशु में दूध देवे की मात्रा को बढ़ावे है। और पानी आप साफ सुथरा अवश्य पिलाएं, साफ, और अपने पशुओं की सुथरी जगह हो, यानी कि जो बिछावन है उनकी वहाँ पे साफ सफाई रखें, फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। तो भैया हम तो आपसे ये कहें कि पशु है काय हमारे किसान भैया की बहुत कीमती आए रहे हैं, और जो हमारी बकरी है बहु कीमती है, आपे पता ही है कि अभी हम बता चुके हैं कि आपको विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे, रेडियो रिपोर्ट सुनवाएंगे, वो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम फरे के स्थापना दिवस पर 12 जुलाई को आयोजित एवं द्वितीय राष्ट्रीय बकरी दिवस पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता हैं दिलीप यादव और प्रस्तुति है ओपी सिंह की।
1: 12 जुलाई 1979 को स्थापित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह का स्थापना दिवस रविवार को संस्थान परिसर में किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के बीच चिंतन मंथन के मध्य मनाया गया। इस अवसर पर प्रगतिशील बकरी पालक, किसान, देश विदेश के ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक और विभिन्न पशु प्रेमी संस्थानों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में IVRI बरेली की वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण शर्मा ने अपने संस्थान में बिताए बचपन की यादों को ताजा करते हुए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा,
2: सबसे पहले स्थापना दिवस की शुभकामनाएं समस्या अजी परिवार को और उनके पहले परिवार के मुखिया को, और परिवार के मुखिया के साथ साथ संस्थान की प्रथम महिला को। मैं अपनी बात को थोड़ा प्रोफेशनली और हल्का सा आधे मिनट के लिए इमोशनली भी रखना चाहूंगी। प्रोफेशनली बिकॉज किसी भी संस्थान के लीडर का एक सोच और उसको आगे ले जाने की जो कोशिश है वो बहुत छोटी छोटी चीजों में झलकती है, और मुझे इसको कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने फाउंडेशन डे को जमा पहनाया और उसको बोला कि ये हमारा राष्ट्रीय बकरी दिवस है, तो वो एक सोच जो आज द्वितीय बकरी दिवस हुआ, और ये खाली CIRC का नहीं है, राष्ट्र का हो रहा है। तो डॉक्टर मनीष, ये बहुत अच्छी एक बात है, और हम खाली ये कहें पर जब हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, फाउंडेशन डेज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारा सबका और ब्रेड एंड बटर इज लिंक्ड टू द स्पीसीज, बिकॉज इट्स अ स्पीसीज बेस्ड इंस्टीट्यूट। या जैसे आपने अपने केक को बताया, समय बहुत जल्दी होता है और 47 ईयर्स हो गए, बहुत जल्दी आप अपना गोल्डन जुबली मना रहे होंगे संस्थान का। कुछ ही वर्षों जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में उपलब्धियां दिखाई, बहुत धन्यवाद हम सब के साथ शेयर करने का, इट इज प्रेज वर्थी। मैं चाहूंगी हम सब करतल ध्वनि से समस्त वैज्ञानिक और समस्त CIRC परिवार वालों का आपके अग्रज होने में, आपके लीडरशिप में, मैं 14 वैज्ञानिकों का साथ लेकर आपने जो ये सब दिखाया जिसमें आप

कार्यक्रम सुनवे वारे सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया देखो, आज आप हमारे यह ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम सुनेंगे। वो है रेडियो रिपोर्ट केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम फरह के स्थापना दिवस पर आयोजित है। तो भैया, ये तो आपको कार्यक्रम हम सुनवाएंगे, पर आपसे कर ले हैं थोड़ी सी हम

0: ग्रांटेड चाहे वो रजिस्टर्ड पेटेंट हो, टेक्नोलॉजी हो या प्रोडक्ट हो, पर वो आपके हाथ में है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप इसके बधाई के पात्र हैं। इनका एक सपना है जो इन्होंने रखा है 2047 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी बताया है, उसमें इनका सपना है कि ये 1.5 मिलियन से बढ़ के 1.92 इफ आई एम करेक्ट विद द डेटा, सो करीब करीब ये उसको 2 मिलियन की बात करना चाहते हैं। व्हाई नॉट। मैं हल्का सा इसको दूसरे दिशा में बताऊंगी। पुअर मेंस गांव बोलते हैं और फार्मर कृषि सखी जो है वो उनका ध्यान रखती हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए। और जहाँ तक दूसरी बात ये क्लाइमेट रिसिलियंट भी है तो फ्यूचर पशु क्यों ना हो। खैर, वहाँ झोपड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते 2010 आया, इस संस्थान को सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड से भी नवाजा गया। और जो आपने दिखाया अभी, मुझे लगता है अगर दूसरी बार मिल जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये उस दिशा में बढ़त कर रहा है सबका साथ लेके।
1: भारत एग्रो फाउंडेशन के निसार खान चुरू राजस्थान के निवासी खान ने अपने बकरी पालन के अनुभव साझा किए।
2: मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सीआईआरजी के डायरेक्टर श्री मनीष कुमार जी, सभी साइंटिस्ट और सब जगह से पधारे हुए अपने किसान साथी बकरी पालक, आप सबका मैं भारतीय एग्रो फाउंडेशन और निसार इंडियन गोट फार्म चूरू राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हम बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने बकरी पालन का क्षेत्र चुना। वैसे तो 3 पीढ़ियों से ये काम हो रहा है, लेकिन पहले परंपरागत तरीके से होता था और अब साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहते हैं। तो जब हम जैसे ही हमने काम शुरू करना स्टार्ट किया तो हमें शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, चूरू क्षेत्र है वो प्रसिद्ध, आप तो जानते ही हो, बहुत भयंकर गर्मी रहती है। मई जून में 55 डिग्री तापमान रहता है और सर्दियों के अंदर -5 डिग्री टेम्परेचर है वो चला जाता है। और आंधी तूफान का तो पूछो ही मत, मई जून में बहुत खतरनाक तूफान आते हैं। और पानी की बात करें तो ना कोई नदी है ना कोई नहर बहती है, जमीन का पानी भी 1200 TDS के लगभग है, यानी कि पानी की तरफ से भी बिल्कुल नेगेटिव। और ये सारे प्राकृतिक संसाधन है वो सब खिलाफ थे बकरी पालन के। उसके बाद भी हमने बकरी पालन शुरू किया तो हमने 1200 टीडीएस के पानी में, साथियों, नेपियर घास है वो 2 साल की मेहनत के बाद बिना किसी केमिकल के बकरियों के मेन्योर से ही हमने खाद बना के 2 साल हमने मेहनत की, तो आज जो नेपियर घास है पूरी तरीके से सक्सेस हो गया हमारे 1200 टीडीएस के पानी में। अपना जो भारतीय ग्रो फाउंडेशन है वहां पर ये घास आज भी लगा हुआ है। इसके अलावा बकरियों की पीने के पानी की समस्या, क्योंकि फ्लोराइड बहुत है जमीन के पानी में, तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो बिल्डिंग है, जो शेड बने हुए हमारे, उन शेड का पानी हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं जमीन के अंदर, जो राजस्थान में सालों से परंपरा रह रही, तो उस पानी को हम बकरियों को पिलाने के लिए काम में लेते हैं। और चारे की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, तो सूखे चारे में तो राजस्थान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, अहरे चारे के नाम पर वहां पर सिर्फ बारिश का सीजन ही फायदेमंद रहता है, तो उसके लिए हमने नेपियर उगाया है। तो साथियों, ये समस्या हमारे साथ आई तो गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बकरियों के जो आवास बनते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आई, तो हमने काफी मशक्कत के बाद, काफी टाइम के बाद कुछ देसी चीजें यूज की, कुछ कमर्शियल चीजें यूज की, तो हमने लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर का उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली गर्मियों में कम करने में, ऐसे आवास हमने तैयार कर लिए। तो साथियों, ये सारी चीजें हमारा फाउंडेशन भी भारतीय ग्रो फाउंडेशन है, उसके जरिए हमने आम फार्मर तक पहुंचाने के लिए हमने फाउंडेशन बनाया, वो पिछले 2-3 साल से हम ये जो काम है वो कर रहे हैं। तो इन समस्याओं को हल करने में सीआईआरजी के जो साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर सर हैं, इन सब ने हमारी बहुत मदद की है। पहले हमें लगता था कि शायद ये चीजें हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ये भी सोचते थे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पता नहीं यहाँ के इतने हाई फाई साइंटिस्ट हमारी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सारा जो स्टाफ है, डायरेक्टर सर से लेके साइंटिस्ट तक, सब एकदम विनम्र स्वभाव के और किसानों के साथ बिल्कुल आत्मीय तरीके से बात करते हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि अब हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत मदद की, कभी भी कॉल करो हर समस्या का समाधान करते करते हैं। डॉक्टर एम के सिंह जी हैं,

0: डॉक्टर रविरंजन जी सर हैं और डॉक्टर सोनी जी हैं और डायरेक्टर सर हैं, जितना टाइम इनको मिलता है बिल्कुल ये भी पूरा सहयोग करते हैं। और अब इसके बाद में एक समस्या और आ रही है, हम सब चीजों से हमने निजात पा ली है, अब समस्या आ रही है कि बकरियां है वो बच्चे अलग अलग टाइम में दे रही है, कभी बारिश में आ रहे, कभी सर्दी में आ रहे, कभी गर्मी में आ रहे। अब आपको पता खान पान ऐसा हो गया है कि वो जो सितंबर अक्टूबर वाली अप्रैल मार्च वाली जो ब्रीडिंग है वो शेड्यूल सारा बिगड़ गया है। तो हम मन में हमेशा ये सोचते रहते थे क्यों ना कोई ऐसा उपाय आ जाए कि हम कंट्रोल कर सके कि हमें किस समय बच्चे लेने हैं। तो हमें पता चला कि सीआईआरजी के साइंटिस्ट डॉक्टर सोनी जी हैं, यहाँ बैठे होंगे, उनकी देखरेख में, अन्य साइंटिस्टों की देखरेख में जो स्पंज टेक्निक है उसका आविष्कार हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी हमने परचेज की है और हमारा मकसद है कि वो स्पंज हम आम फार्मर तक कम से कम कीमत में उपलब्ध करवाएं और उसकी जानकारी वो पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास माध्यम है साथियों।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह मलिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संस्थान की गतिविधियों का भ्रमण कर और निरीक्षण कर पाया कि संस्थान बेहद कम संसाधनों के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
2: धन्यवाद डॉक्टर, इस सभागार में उपस्थित सभी जन मंचासीन अग्रज, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष टाटली, मैडम तरु शर्मा जिनके साथ मेरा अपना एक लंबा समय बीता IDRI में कुछ सीखने का, बात करने का और आज ये मंच भी शेयर करने का उनके साथ सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन बम्पाल जी, कुछ कुछ मुझे इस संस्थान के बारे में सुनने को मिला मेरे ही जो सीनियर DDG डॉक्टर TML पाठक साहब से, और आज रूबरू निदेशक महोदय से भी होने को मिला। हमारे DFO साथी श्रीकर पटेल जी, इस संस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर अंशु चाटी, सबसे पहले मैं इस संस्थान के 47वें स्थापना दिवस है उस पर अपनी तरफ से, क्योंकि मैं काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं काउंसिल की तरफ से भी डॉक्टर चाटली को, संस्थान निदेशक को, यहाँ के सभी परिवार, वैज्ञानिक परिवार और परिवार सभी को एक बधाई देने का मैं मौका लूँगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ। ये जो सेकेंड बकरी नेशनल राष्ट्रीय बकरी दिवस जो मनाया गया, जिसकी लीड या जिसकी शुरुआत भी डॉक्टर चाटली से हुई है, इस परंपरा को भी आप बनाए रखिएगा। डॉक्टर साहब किसी उच्च पद पर कुछ समय के बाद मिलेंगे आपको, पर इस परंपरा को मत छोड़िएगा। इन्होंने जितने भी अच्छे कार्य यहाँ पर अभी जिनका इन्होंने आयोजन भी किया है, कुछ को नया रूप दिया है, उन सभी पर आप सभी के ऊपर दायित्व है कि उनको आप आगे लेके चलेंगे। इस संस्थान की उत्पत्ति जैसा कि निदेशक महोदय ने कहा 1979 IVRI से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और जब इन्होंने उपलब्धियां बतानी एक वर्ष की शुरुआत की, मैंने कुछ लिखना शुरू किया कि ये कुछ कुछ बताएंगे और मैं लिखूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा। ये जो इन्होंने कहा कि IVRI से उत्पत्ति हुई, और जब इन्होंने पूरा अपना बखान, जितनी टेक्नोलॉजी, जितने पेटेंट, जितने कार्य बताने शुरू किए, थोड़ी देर के बाद मैंने लिखना बंद कर, मैंने कहा कि ये निदेशक महोदय रुकने वाले नहीं है, ये एक वर्ष का बता रहे हैं या 5 वर्ष का बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। पर जब इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक वर्ष का, तो मेरे हिसाब से IVRI छूटा नहीं है, ये IVRI को यहाँ ले आया, ये IVRI से उत्पत्ति नहीं हुई है इनकी, इन्होंने यहाँ पर भी एक IVRI को पैदा कर दिया और वो इनका नेतृत्व बता रहा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिन्होंने टच ना किया हो, AMR, पेटेंट, टेस्टिंग फैसिलिटीज, जैसा कि मैडम तरु ने भी बताया, ब्रुसेला एक बहुत डेंजरस सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, लोग काम करने से डरते हैं उस पर, मुझे पता है गुरुराज और कुछ टीम ने काम इस पर किया, बट इस संस्थान ने उसको छोड़ा नहीं। बहुत सारे जो इन्होंने जो इसके अलावा पेटेंट्स, पॉलिसी पेपर, स्ट्रेटेजी पेपर, जीन सीक्वेंसिंग और सभी टेक्नोलॉजीज बनाने में एक बहुत समय लगता है, एक लंबा कार्यकाल है, उसका प्रोसीजर है, उसकी वैलिडेशन है, बट इन्होंने जो बखूबी उसको निभाया और पूरे भारतवर्ष में तृतीय स्थान सभी इंस्टीट्यूट्स में पाया, ये एक बहुत ही उम्दा इनका कार्य करने का तरीका, और हमारे सारे वैज्ञानिकों ने जो साथ दिया उनका भी मैं इस मंच से उनको भी धन्यवाद कहूँगा। यही अपना आगे भी आप बनाए रखें,

राजस्थान की विजिबिलिटी जो आई है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे सीआईआरजी को फॉलो करता हूँ, लगभग कोई ना कोई नया कार्यक्रम मुझे देखने को मिलता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, एक्स है, किसी भी मंच पर आप जाएंगे आपको सीआईआरजी काम करता हुआ दिखाई देगा। ये एक बेहतरीन तरीका है और आज के समय में तो ये कहा ही जाता है, मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इन्होंने उसको दिखाने का कार्य भी किया कि ये हम काम कर रहे हैं, आप जानिए। काफी सारे हमारे आईएएस या सीनियर सेक्रेटरीज को ये नहीं पता कि पशुधन में हो क्या रहा। हमारे पास कुछ अभी कुछ आईएएस सेक्रेटरीज की जब उनकी ट्रेनिंग पार्ट चलता है वो हमारे पास काउंसिल में आते हैं और अलग अलग एसएमडी जो, जैसे मैं एजुकेशन को देखता हूँ ऐसे नेचुरल फार्मिंग को, अलग अलग हमारी एक्सटेंशन को देखने की वो है, और सभी आईएएस की वहाँ पर कुछ समय के लिए, एक महीने के लिए वो हमारे जो कृषि मंत्रालय है उसमें आते हैं। अभी उसमें से 6 जो आईएएस थे वो एजुकेशन डिवीजन में भी आए, और मैंने काफ़ी जब चर्चा की तो मुझे नहीं लगा कि उनके पास कोई भी चर्चा का विषय भी था। एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन क्या हो रहा है, किस तरह से वेटनरी साइंस कर रहा है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं। तो ये मंच जैसा आज निदेशक महोदय ने दिया, ये एक सही मंच है। डीएफओ साहब ने यहाँ ज्वाइन किया, समय निकाला, और भी जो हमारे अभी डॉक्टर मनीष बता रहे थे कि यहाँ के जो एडीएम साहब है, he is also from a veterinary side, वो उन्होंने भी इस संस्थान का सहयोग किया और हमारी एक जो संस्थान को दिखाने के लिए कि क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज है, वो जो मेन रोड तक पहुंच जाएगी। मैं काउंसिल की तरफ से उनका भी धन्यवाद करूंगा और लीड लेने के लिए हमारे निदेशक महोदय का। इन्होंने पॉडकास्ट भी दिखाए, एक दो पॉडकास्ट मैंने सुने भी हैं, इतना बखूबी से कितने डिटेल में वार्तालाप किया गया है, और जो कि हमारे किसान भाई बहन जितने भी हैं उनके तक वो बातचीत पहुंच सके, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें करना है, ये सारी चीज़ें उसमें ये लेके आते हैं। और मैंने कई सारे जो इनके पास के पॉडकास्ट हैं वो सुने, कुछ गणना हमारे सिंह साहब ने बताई और हम पहले स्थान पर हैं या दूसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर हैं, ये गणना तो है हमारे पास, पशु गणना जो आती है हर 5 साल के बाद हमारे पास जो आ जाती है, पर सीधा जो गणना साफ समझ में आती है हमारा किसान, अगर उसका उत्थान हो रहा है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2 गुना आए, अगर जैसा कि बकरी पालन में हुआ है और पिछले 5 या 5 या 1 दशक की बात करें, ये 2 गुना तक रहने वाली नहीं हो सकता है। अगर ये सही से दिखाया जाए मंत्रालय को तो ये शब्दावली चेंज करके 4 गुना भी कहा जा सकता है कि अगर बकरी पालन अपनाया तो आपकी आय 4 गुना भी होगी। इस गणना को भूल जाइए कि हम विश्व में दूसरे तीसरे किस भी स्थान पर हैं, हमारा किसान पहले स्थान पर होना चाहिए। उसके पास कोई भी, हमारी 2 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, जिसमें एक तो माल न्यूट्रिशन खत्म होनी चाहिए और दूसरा फूड सेफ्टी होना चाहिए। अगर आपने इसी बकरी पालन को अपनाया तो ये समस्या माल न्यूट्रिशन की खत्म हो जाएगी। अभी दो मेरे एक छोटा सा भ्रमण मैंने किया, समय की थोड़ी सी बाधक था उसमें, पर फिर भी निदेशक महोदय ने मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो संस्थान में कार्य चल रहे हैं, कुछ नए भी हैं और कुछ पुरानों को उन्होंने उठा के एक उत्तर पर लेके आया है। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स की बात हुई, एक बहुत ही अच्छा एक बदलाव जो हो सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, फीड मिक्सिंग यूनिट बनाई गई है। अगर ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में फैलाव हो जाए, ये काम आ जाए, तो हमारा पशुधन भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, और जिस चीज़ से हम भूखमरी से लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, उसमें हम कहीं ना कहीं बकरी पालन के माध्यम से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और जितना भी कार्य ये कर रहे हैं, इन्होंने एक पक्ष में हमेशा सोचता था शायद रह गया होगा, शायद रह गया होगा, क्योंकि कमी निकालने की हमारी आदत है, आदत बनी गई है, हमसे अच्छा कौन, ये मानने को दिल तैयार नहीं होता। पर डॉक्टर मनीष ने उस पत्थर को भी पलट डाला, सोशल वेलफेयर, आपको कैशलेस दिलवाने का काम, पार्ट के साथ काम करने का कार्य है, और जो बाहर आज जनसेवा में उन्होंने एक

0: शिविर भी लगाए, उस जो संस्थान ने कार्य कर रहे हैं मैं उसको बधाई दूंगा और सबसे बड़ी बधाई दूंगा कि इन्होंने उस सोशल एस्पेक्ट को भी नहीं छोड़ा। सब कुछ हमें करना है और वो नेतृत्व के माध्यम से ही हो सकता है। एक चीज हमेशा जो भी मुख्य अतिथि होता है वो कुछ सलाह देने आता, उसको वो कहीं से ढूंढता भी है, पूछता भी है कि मैं सलाह तो जरूर देके जाऊंगा क्योंकि मैं मुख्य अतिथि हूँ, पर मैं दिल से कहता हूँ मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा, मैं आपसे सीख लेके जाऊंगा। आपके वैज्ञानिकों से जो कार्य कर रहे हैं, मैं जिस भी संस्थान में जाऊंगा ये जरूर कहूंगा कि एक बार CIRG से सीख के आए। उनके वैज्ञानिक जितना इन्होंने नंबर जरूर बताया, मैं आंकड़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, 20 हैं 45 होने चाहिए, बट जो 20 है ना वो 45 से ज्यादा काम कर रहे हैं। आपका खाली वैज्ञानिक काम नहीं कर सकते, उसके नीचे भी एक हायरार्की है हमारी, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, टेक्निकल है, SSS है, MTS है, अनेकों अनेक लोग जो है नीचे से जुड़े हैं, ऊपर तक कार्य करता है। जो टेक्नोलॉजी आज बनी है काफ़ी सारे हमारे साथियों ने जो यहाँ लिया है, बट उसकी शुरुआत किसी MTS से किसी SSS से हुई होगी। मैं उनको भी यहाँ मंच से बधाई दूंगा कि वो इसी तरह से अपना कार्य करते रहेंगे।
1: कार्यक्रम में रेडियो कृषि पाठशाला के विजेता प्रतिभागी किसानों को भी सम्मानित किया गया। दीनदयाल धाम के निदेशक सोनपाल जी ने भी संस्थान की गतिविधियों की सराहना। इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एसोसिएट डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन USA ने संस्थान की अनुसंधान के कृषकों तक पहुंचने की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार चिटली ने संस्थान के उन्नत कार्य करने वाले विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मखदूम गांव के प्रधान और निकट के गणमान्य जनों को भी पटुका स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे रेडियो रिपोर्ट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह के स्थापना दिवस 12 जुलाई को आयोजित एवं द्वितीय राष्ट्रीय बकरी दिवस पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप यादव, प्रस्तुति OP सिंह की थी। तो भैया आप पता है ना, आप समझ गए हैं ना कि बकरी जो हमारी इतनी छोटी सी है, चाहे हम गरीब की गाय कह देना, कितना बड़ा कार्य चल रहा है जाके लिए। अब आप समझ गए अपने क्षेत्र में ही चल रहे हो और एक कार्य अभी और करना है कि नेक ठाकुर जी को स्मरण करना है और सुन ले हैं राम स्वरूप शर्मा को गायो भयो ये लोग गीत।

राम स्वरूप शर्मा को गायो भयो सुनो लो गीत सुनी जिंदगानी भजन बिना। तो भैया बात बिल्कुल सही है, संध्या का समय है भजन संध्या, तो संध्या के समय अच्छी लगे और हमारे कार्यक्रम को समय संध्या को ही अत है। अब कार्यक्रम को समय पतो है समापन को है। अब आज को ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब यहीं पे हुए है संपन्न। कार्यक्रम सुनबे बारे सभी भैया बहनन को

0: हमारी राम राम।
1: किसान भाई और बहनें सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आई थी आपके बीच ममता रानी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम का ये गीत फिल्म प्रणय से, स्वर शर्मा बंधुओं का, संगीत जयदेव का।

रामानंद शर्मा के गीत को संगीत दिया जयदेव ने और स्वर से सजाया था शर्मा बंधुओं ने। फिल्म परिणय से लिया था ये गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे वाणी जयराम और साथियों को फिल्म गुड्डी में, गुलजार का गीत संगीत वसंत देसाई का, आई सुने लता मंगेशकर को फिल्म लगान में।

0: उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म लगान से ये गीत। गीत जावेद अख्तर का, संगीत एआर रहमान का था। और इस गीत के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना

0: ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक नो टेंशन।
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक नो टेंशन।
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्य में डॉक्टर नरपति देव भरद्वाज से ब्रजवार्ता, ब्रज की मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े।
5: इत बरहदुत सौनद उत सूर सैन को गांव ब्रज चौरासी कोस में मथुरा मंडल धाम। जा उक्ति हूँ जे जानो जाय सके है कि ब्रज क्षेत्र 184 कोसी परिक्रमा के भीतर आये बारो जो श्री कृष्ण की लीला स्थली रहे होते और दूसरों मथुरा को केंद्र बिंदु मानते भे बाकी आस पास को 84 कोसी क्षेत्र जाय ब्रज क्षेत्र कहो जाय सके है। या क्षेत्र की ललित मादक और विलक्षण संस्कृति अनिर्वचनीय प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षण को प्रस्तुत करती रही है। ब्रज को लालित्यानुपाणित जीवन दर्शन प्रेम पग्यो आतिथ्य अल्लड़ता और मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े या क्षेत्र की जैविक अस्मिता हते हैं। या कि संगई संग करोड़न लोक मानसुन की आशा निराशा हर्ष विषाद जीवन मरण लाभहान और सुख दुखन की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति को अवगाहन ब्रजलोक संस्कृति सरता में किया जा सके। आनंद प्राप्ति की आकांक्षा अभिव्यक्ति और वासो मनोविनोद मानव को सहज स्वभाव रहे होते। यही क्रम में विद्या और कलान को मानव आकांक्षा प्रतिपूर्ति की दिशा में उपादान कहो जा सके। आर्ष वाङ्मय में 14 विद्या और 64 कलान को वर्णन की मिले है। 14 विद्यान में 4 वेद 6 वेदांग एक पुराण शास्त्र एक न्याय शास्त्र एक मीमांसा और एक धर्म शास्त्र को समाहित किया जा सके। कला अनंत है पर बिन में 64 कलाई मुख्य हते हैं और इन 64 कलान में नृत्य संगीत वाद्य चित्र वास्तुकला और मल्ल शास्त्र कला प्रमुख मानी गई हते हैं। जा हिसाब तो मल्ल विद्या की परंपरा ब्रज क्षेत्र में लगभग 5,500 वर्षों चली आ रही है। ये वो कहो जा सके है कि बलराम ने मथुरा के राजा कंस के चाड़ूर आद मल्लन को कुश्ती में परास्त कियो हतो। ये मल्ल विद्या तभी सो भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की चलाई गई मानी जा रही है। या तरिया सो मल्ल विद्या की परंपरा ब्रज क्षेत्र में लगभग 5,500 वर्ष पुरानी कही जा सके। याई मल्ल विद्या परंपरा में मथुरा में हवा और भीकम गुरु ने संबत 1900 के आसपास चौकी अखाड़ो चालू कियो हतो। हल्ला गुरु बड़े पहलवान हते। रंगा बंशी दो भैया याई अखाड़े के बड़े पहलवान में से गिने जा सके हैं। याई समय व्यायामशाला और भवंतगढ़ अखाड़े मल्ल विद्या परंपरा के चर्चित अखाड़े रहे हते। भवंतगढ़ अखाड़े के बदन्नी गुरु बड़े पहलवान में गिने जाए। अब तो लगभग 125 वर्ष पहले मथुरा की धरोहर शिवताल स्थित पीपल अखाड़े को श्री गणेश गुरु ने कीनो हतो। दाऊजी और गयालाल गुरु और बलदेव गुरु जा अखाड़े के नामी पहलवान रहे हते। बलदेव गुरु यूपी केसरी हिंदू पहलवान थे जिनकी कुश्ती नगला दीना के अलवरक पहलवान सो 3.5 घंटा भई हती जो बराबर की छूटी। इन्हीं बलदेव गुरु की कुश्ती मूसा सिंह पहलवान सो 1 घंटा वैवे के बाद बराबरी पर छूटी हती और भई हती सम्मा पहलवान इटावा सो। चुन्नी बद्री मनका राजवीर पहलवान हाथरस आज पहलवान याई अखाड़े सो हते। रामविलास यूपी केसरी शिवाले पहलवान यूपी केसरी शालिग्राम पहलवान जिला केसरी और नारायण सिंह पहलवान राजस्थान के।

स्वर्ण पदक विजेता बड़े पहलवानों में रहे हते। कुंजन गुरु और ईश्वर चंद खलीफा जा पीपल अखाड़े को बड़ोई खूबसूरती सो आज संचालन कर रहे हते। जावे देवेंद्र पहलवान ब्रजकेसरी बंटू ओंकार झम्मन तेली पवन और विष्णु आद बीसियों पहलवान मल्ल विद्या आज सीख रहे हते। याई अखाड़ेन के क्रम में एक दूसरा भूतेश्वर अखाड़ो के नाम सो ख्यात प्राप्त हते, जाके चंदन या चंद्रसेन पहलवान बड़े पहलवान रहे हते। ब्रजकेसरी मोहन पहलवान इन्हीं के बेटा हते। सिरखेरे के फूली पहलवान बाटी के रामजीत और बिसावर के पदम सिंह पहलवान बड़े पहलवानन में गिने जाए बारे यही अखाड़े के पहलवान हते। मथुरा को ही एक तीसरा अखाड़ो गिरधारी नाम सब जाने जाए विश्वम्बरनाथ पहलवान और इनके शिष्य पूरन जट्ट जिनको भारत भीम के नाम से जाने जाए बड़े पहलवानन में हते। पहलवान पारा पहलवान यही अखाड़े के बड़े पहलवानन में से हते। ब्रज क्षेत्र के नामी पहलवानों के क्रम में मथुरा को चौथा अखाड़ो शिवालय अखाड़े के नाम से जाने जाए है, जाके मुरारी हनुमान प्रिंस और गुंगा पहलवान बड़े पहलवानों में गिने जाए है। मल्ल विद्या परंपरा में डीक के परम धरा अखाड़े को नामों बड़े आदर के साथ लियो जा सके। जहां राजस्थान के श्री नत्था सिंह जैसे पहलवान प्रताप और बबलू पहलवान ब्रज क्षेत्र को गए हते। अंड खुड़ंसा के फत्ते पहलवान बहू के रामदेव पहलवान की कुश्ती डी के दंगल में रुस्तम हिंद जयप्रकाश पहलवान सो भई हती और भई हती मथुरा के पहलवान सालिग्राम सो जो बराबर पर छूटी हती। झाऊ की बरौली के रघुवीर और पटवारी पहलवान जयंत के धर्म सिंह सांचौली के कमल सिंह पंडा सुरीर के नारायण सिंह पारसौली के प्रताप प्रहलाद बिसावर के सोवरन राजेगढ़ी के नारायण सिंह बदन सिंह निरंजन पहलवानन के नाम मल्ल विद्या परंपरा में बड़े ही आदर के संग गिने जा सके हैं। मल्ल विद्या परंपरा में हाथरस के अखाड़े के धाऊबाग को अखाड़ो नामी रहे होते हैं। जा अखाड़े को वीरेंद्र पहलवान कुंवरपुर और भोला पहलवान अखयपुर आदि अखाड़े की ज्योति जलाए गए होते हैं। हाथरस को एक दूसरा अखाड़ो पवन व्यायामशाला के नाम से जाना जाए है। रामेश्वर आदि पहलवान जा अखाड़े के अच्छे पहलवान रहे होते हैं। हाथरस के ही एक तीसरा अखाड़ो ज्ञानगढ़ नाम से प्रसिद्ध हते बाबू आद पहलवान जा अखाड़े के मशहूर पहलवान रहे हैं। हाथरस बल्लन की श्रृंखला में कुमरपाल बनी सिंह महाराज सिंह नन्ने तकिया सालिग्राम बड़ाखुर्द पहलवान के नामन को बड़े आदर के साथ लियो जा सके है। तिनमें सो राजवीर पहलवान हाथरस विधानसभा क्षेत्र सो विधायक रहे हते। ब्रज के श्री हरकेश पहलवान जिनन ने अभी हाल ही में नागा बाबा मेला छाता में आयोजित कुश्ती दंगल में पंजाब के श्री विक्रम पहलवान को पछाड़ के 1,25,000 रुपया को अवार्ड हासिल कियो हते। मल्लूगढ़ी के मुखिया पहलवान तो 17 बार विदेशन में कुश्ती लड़बे के भारत को नाम रोशन करते भये हते। अनेक पुरस्कारन को इन्होंने प्राप्त करो हते। निश्चय ही इन नामी ग्रामी पहलवानन के मल्ल विद्या परंपरा के जीवंत बनाए रखने में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी हती। मल्ल विद्या ब्रज की धरोहर कही जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। अब यही क्रम में कछु अखाड़ेन के नाम और बिनसो जुड़े भये पहलवानन के नामन को गिनाया जाए समीची नहीं होगा। तो सुनो इगलास बाजगड़ी के जिला के श्री रामा पहलवान सोना देवकी फत्ते सूरजमल गिरिराज बाबू भैरा रामा अखाड़े के मशहूर पहलवान रहे हते। दघेटे के ख्याली अरनिया के सोहन सिंह पारसौली के मुख्तियार दिगंबर तोछीगढ़ के चुन्नी सिंह बसगोई के गोपाली जावरे के धनपाल मई के हरचरण बलखान पिंजरी के रूम सिंह करेला के सन्नाम सिंह कारबबंदी के उदय सिंह तिरवाहे के पालू सूर्यदय के धीरी सरौठ के गिरिराज सिंह करील के जिला के श्री रामगोपाल नगला हंसी मुरसान के हेता कौड़ेरे के कारे सौख बगोर्रा के जयदेव आदि इन नामी ग्रामी पहलवानन के नाम ब्रज की धरोहर मल्ल विद्या परंपरा के क्रम में बहुत ही आदर के संग ही गिनाए जा सके हैं। ब्रज क्षेत्र की मल्ल विद्या परंपरा और अखाड़े के क्रम में मल्ल विद्या के अंतर्गत प्रयोग हैवे बारे दाव पेचन की जानकारी दिए बिना ये ब्रज यात्रा वार्ता कछु अधूरी ही सी रहेगी। तो सुनो मल्ल विद्या के दाव पेचन के बारे में जातरिया सो। मल्ल विद्या में पहलवान जिन दाम पेचन को कुश्ती मारवे में इस्तेमाल करे हैं वो हैं टंगी मार

0: समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण

0: में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5,00,000 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
1: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिन्दुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
0: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, इफेक्टेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने एसआईटी की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं एसआईटी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं।
1: एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना, अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करते हैं। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा, मैंने उनको पूरा जो हमने देखा, सुना, जाना, समझा, वो सब बताया।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
2: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा। 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।